0: एक बार कुछ जिज्ञासुओं ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि मनुष्य डेवलपमेंट क्यों चाहता है, विकास क्यों चाहता है, उसे पाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। दरअसल विकास यानी कि डेवलपमेंट नेचर यानी कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, होके रहेगा, आप करें या ना करें। सृष्टि में सब कुछ गतिमान है, चलता ही रहता है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है और विकास करना, आगे बढ़ना उसका मौलिक लक्षण है। मनुष्य को यह पता है कि जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा, विकास पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। विकास का पथ चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, इसके पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में सुख भोग की चाहत ही होती है। क्योंकि मनुष्य की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए सिर्फ वो अपने लिए सुख समेटना उसका मौलिक गुण धर्म नहीं होता। उस सामाजिक जीवन को भी वो सुख पहुंचाना चाहता है जिसे वो भोग रहा है। विवेकशील प्राणी होने के कारण वो अच्छे बुरे के बारे में सही निर्णय ले सकता है। जब वो सही निर्णय लेने लगता है तब आध्यात्मिक महत्व को भी समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेने के लिए उसे सुबह शाम साधना करनी पड़ती है। इसी साधना की बदौलत मनुष्यों में व्यक्तिगत मानसिक विकास और विश्व बंधुत्व की भावना कायम होगी।
1: यहां एक और बात बहुत जरूरी है दोस्तों,
0: आध्यात्मिकता के साथ मनुष्य को भौतिक और मानसिक जगत से भी संतुलन बनाकर रखना होगा। मनुष्य में वृहत्त को पाने की आकांक्षा है, इसे बड़ा देखने की इच्छा भी कह सकते हैं, इसे बड़ा बनने की इच्छा भी कह सकते हैं। अगर उसमें यह आकांक्षा न होती तो ब्रह्म समुद्र में रहकर भी वो परब्रह्म को पहचानने का प्रयास न करता और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। विराट को पाने का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक कार का मालिक पांच कारों का मालिक बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, मगर माने या ना माने सीमित संपत्ति को सभी मनुष्यों को संयुक्त संपत्ति के रूप में ग्रहण करना होगा। सीमित वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे दौड़ दौड़ कर धक्के खा खा कर मनुष्य ने एक दिन ये सच तो खोज ही निकाला था कि सच में उसका मन ऐसा कुछ पाना चाहता है जो जीवन भर के लिए बस मिल जाए।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन। बहुत मुश्किल है डगर इस संसार की, किसी गुरु की तलाश कीजिए जो हमें इन मुश्किल रास्तों से निकल जाने का उपाय बताए।

एक बार बहुत फेमस रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन को अनुसंधान काम के लिए एक सहयोगी की आवश्यकता थी। बहुत सारे युवक प्रार्थना पत्र लेकर उनके पास आए, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं लगा। एक दिन एक युवक उनके पास आया। नागार्जुन ने उसे एक काम दिया और कहा, 3 दिन के अंदर इसे पूरा करके आओ। तीसरे दिन युवक लौटा तो उन्हें पता चला कि काम पूरा नहीं हो पाया है। नागार्जुन ने पूछा, तुम ये काम पूरा क्यों नहीं कर पाए? तब युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं इस काम को करने ही वाला था कि मुझे मृत्यु से जूझ रहा एक रोगी मिल गया। मुझे लगा कि ये काम तो मैं बाद में भी पूरा कर सकता हूं, लेकिन रोगी के प्राण बचाने के लिए मैंने उसे तत्काल अस्पताल ले जाना जरूरी समझा। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया और उसकी सेवा की, इसलिए ये काम पूरा नहीं हो पाया है। नागार्जुन ने उस युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा, बस मुझे तुम्हारे जैसे करुण हृदय सहयोगी की ही जरूरत है। उसे उसी समय नियुक्त कर लिया गया।

90.8 FM रेडियो टेंटिया भील पर आप हैं आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन प्रोग्राम में।

मैं दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। चैट GPT पे क्या सर्च करें और क्या नहीं, आज की कहानी थोड़ी हटके है, थोड़ी करंट है, और ऑनेस्टली बहुत जरूरी है। कल शाम शायद आप में से कई लोगों ने देखा होगा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जहां बात हो रही थी AI की, चैट GPT की, और हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। और तब मुझे लगा कि ये बात सिर्फ डिस्कशन तक नहीं रहनी चाहिए, इसे हम सबको समझना चाहिए। चैट GPT पर क्या सर्च करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज के टाइम में चैट GPT सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक दोस्त जैसा है, एक गाइड जैसा है, और एक टीचर जैसा है। लेकिन हर दोस्त की तरह इसे यूज करने का भी एक तरीका होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या करें, यानी डूज। पहला, क्लियर सवाल पूछें। दोस्तों, अगर आप वेग सवाल पूछेंगे, जैसे करियर में क्या करूं, तो जवाब भी वेग मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं, मीडिया में आना चाहता हूं, क्या ऑप्शंस हैं, तो जवाब भी प्रिसाइस मिलेगा। सीख क्या है? जितना क्लियर सवाल उतना क्लियर जवाब। नंबर टू, सीखने के लिए यूज कीजिए। चैट GPT एक शॉर्टकट मशीन नहीं है, ये एक लर्निंग पार्टनर है। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे आंसर लिख दो, तो आप लिख तो देंगे लेकिन समझ कभी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं ये कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, तो आप सच में सीखेंगे। और दोस्तों, नॉलेज ही असली पावर है। नंबर थ्री, क्रिएटिव काम में यूज कीजिए। स्क्रिप्ट्स में, कैप्शंस में, आइडियाज में, चैट GPT सब में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, उसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसे अपना बनाइए, अपनी आवाज दीजिए, अपना टच दीजिए, तभी वो चीज असली लगती है और आपकी लगती है। नंबर फोर, फैक्ट चेक जरूर करें। दोस्तों, चैट GPT स्मार्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं, कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो डबल चेक जरूर करें, स्पेशली न्यूज, लीगल, मेडिकल, फाइनेंशियल चीजों के लिए। नंबर फाइव, रिस्पेक्ट के साथ यूज करें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिस तरह हम इंसान से बात करते हैं वैसे ही AI से भी करनी चाहिए, क्लियर, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल, क्योंकि जब आप सही तरीके से बात करेंगे तो जवाब भी बेटर मिलेगा। अब बात करते हैं क्या ना करें, यानी कि डोंट्स। नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल डेटा शेयर ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी अपना पासवर्ड, अपना OTP, अपनी बैंक डिटेल्स या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चैट GPT पर शेयर न करें। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन हमें समझदार बनना पड़ेगा। नंबर टू, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। अगर चैट GPT ने कुछ बोल दिया तो वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, उसे गाइड की तरह मत देखिए, अपना जजमेंट यूज करिए। नंबर थ्री, शॉर्टकट के लिए यूज मत करें। असाइनमेंट्स, एग्जाम, काम, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के लिए यूज करेंगे तो शायद काम हो जाएगा,
लेकिन आप ग्रो कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों, ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, इमोशनल डिपेंडेंसी मत बनाइए। ये बहुत सटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग अपनी हर प्रॉब्लम, हर डिस्कशन एआई से पूछने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, जिंदगी के पर्सनल डिसीजंस सिर्फ आपको लेने होते हैं। एआई गाइड कुछ नहीं कर सकता। नंबर 5, कंपैरिजन मत करें। एआई बेटर है, ह्यूमन स्लो है। ये सोच गलत है। एआई एक टूल है, इंसान क्रिएटर है। टूल कभी क्रिएटर से बड़ा नहीं होता। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था रोहन, उसने चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया हर चीज के लिए, असाइनमेंट्स, ईमेल्स, इवन मैसेजेस टू फ्रेंड्स। धीरे धीरे उसने खुद सोचना एकदम बंद कर दिया। एक दिन उसकी टीचर ने पूछा, ये आंसर तुमने लिखा है? रोहन ने कहा, हाँ। टीचर मुस्कुराए और बोले, लिखा तुमने है या किसी और ने? उस दिन रोहन को समझ आया, यूज करना गलत नहीं है लेकिन खुद को खोना एकदम गलत है। आज की बात का सार यही है दोस्तों, चैट जीपीटी एक पावरफुल साथी है, लेकिन यूज आप कंट्रोल करें, वो आपको कंट्रोल न करे। सीखने के लिए यूज कीजिए, समझने के लिए यूज कीजिए, क्रिएट करने के लिए भी यूज करिए, लेकिन सोचना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब यूनिक है और इसी से आप अलग बनते हैं। इसी के साथ आज की ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी और सोचने पर आपको जरूर मजबूर करेगी। ये यहीं समाप्त नहीं होती, इसको कैरी फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए और टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपना दोस्त बनाइए, गुलाम नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मिडिल क्लास प्यार इतना सीधा होता है कि लड़का रोज बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लड़की आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और 6 महीने बाद लड़का हिम्मत करके बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये 522 यहीं से जाती है? प्यार नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई।

सेवन डॉग्स, एक कॉर्गी और दोस्ती का सच। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ना किसी हीरो की है ना किसी विलन की, आज की कहानी सात डॉग्स की है। हां जी, और बिलीव कीजिए ये कहानी आपको हंसाएगी भी, हैरान भी करेगी और एंड में थोड़ा सा चुप भी कर देगी। तो चलिए सीन सेट करते हैं। रात का टाइम है, चाइना का एक शहर चैंगचून। ठंडी हवा चल रही है, सड़क पर हल्का सा फॉग है और एक लंबा सुनसान हाईवे जहां एक आदमी लू नाम का अपनी कार चला रहा है। नॉर्मल ड्राइव, हल्का सा म्यूजिक, थोड़ा सा बोर्डम और फिर एकदम से उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ हिलता हुआ दिखता है। लू आंखें सिकोड़ता है। ये क्या है? पहले लगता है प्लास्टिक के बैग्स होंगे, फिर लगता है शायद कोई जानवर और फिर जब वो थोड़ा सा और पास आता है तो उसका दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, पूरे सात डॉग्स चल रहे थे। और सिर्फ चल नहीं रहे थे, डिसिप्लिन के साथ चल रहे थे, जैसे कोई परेड हो, जैसे कोई मिशन हो। और सबसे आगे कौन? रेडी, एक छोटा सा कॉर्गी। हाँ, वो क्यूट सा, शॉर्ट लेग्स वाला, थोड़ा गोल मटोल सा इंस्टाग्राम का सुपरस्टार टाइप डॉग कॉर्गी। लू के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो उल्टा हो गया, लीडर तो जर्मन शेफर्ड होना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहां तो पूरा सिस्टम ही अलग था। कॉर्गी आगे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कह रहा हो, लाइन में रहो सब, मैं देख रहा हूं। उसके पीछे एक हस्की, एक लैब्राडोर और एक बड़ा सा जर्मन शेफर्ड। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। वो जर्मन शेफर्ड इंजर्ड था, उसका एक पैर ठीक नहीं था और वो हल्की सी लंगड़ाहट के साथ चल रहा था। और अब जो आगे होता है वो देखकर लू सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, वो अंदर से हिल जाता है। बाकी के सारे डॉग्स उस इंजर्ड डॉग के आसपास चलने लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी कवर हो, जैसे बॉडी गार्ड्स हो। कोई आगे जाता फिर पीछे मुड़कर देखता, तू आ रहा है ना? कॉर्गी बीच बीच में रुकता और लिटरली लगता कि वो कह रहा है कि भाई स्पीड कम करो, सब साथ साथ चलेंगे। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, अंधेरी रात, ठंडी हवा और सुनसान हाईवे और बीच में सात डॉग्स का एक ग्रुप, एक इंजर्ड दोस्त और बाकी सब उसे छोड़ने की बजाय उसके साथ साथ चल रहे हैं। ऑनेस्टली अगर ये मूवी होती तो बैकग्राउंड में स्लो मोशन होता और म्यूजिक होता तेरा यार हूं मैं। लू ने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया। अगली सुबह इंटरनेट पर धमाका, लोगों ने नाम रख दिया द सेवन डॉग्स गैंग। मीम्स बनने लगे, किसी ने लिखा ये फास्ट एंड फ्यूरियस का एनिमल वर्जन है, किसी ने बोला कॉर्गी इज द बॉस, रिस्पेक्ट, और एक बंदा तो सीरियस होकर लिख रहा था ये डॉग सीक्रेट मिशन पर है। दोस्तों इंटरनेट कभी सिंपल चीज को सिंपल रहने कहां देता है। कुछ लोगों ने फैन फिक्शन लिख दिया, एक स्टोरी में कॉर्गी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, इमेजिन। दूसरी में ये सब डॉग्स एक माफिया गैंग से भाग रहे थे, और एक वर्जन में तो जर्मन शेफर्ड उनका इंजर्ड सोल्जर था और बाकी सब उसे सेफ जगह लेके जा रहे थे। फिल्मी है ना? बिल्कुल, लेकिन एक बात तो सच है, ये डॉग्स एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। दोस्तों अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, सोचिए अगर ये इंसान होते तो क्या होता। ग्रुप आउटिंग है, एक बंदा स्लो हो गया, कोई कहता भाई तू ऊबर ले ले, कोई कहता हम आगे मिलते हैं, और कोई सीधा बोल देता तू प्रॉब्लम है यार। सच बोलू, हम फास्ट दुनिया में जीते हैं जहां पेशेंस कम है और साथ चलना एक लग्जरी बन गया है लिटरली। लेकिन उस रात चैंगचून के हाईवे पर
सेवन डॉग्स ने हमें दोस्ती का असली मतलब सिखाया। उन्होंने दिखाया दोस्ती का मतलब स्पीड मैच करना नहीं, दोस्ती का मतलब है पेस एडजस्ट करना। अगर दोस्त स्लो हो तो आप रुकते हो, अगर दोस्त गिर गया तो आप हाथ बढ़ाते हो, और अगर दोस्त टूट रहा है तो आप उसके आसपास खड़े हो जाते हो जैसे वो डॉग्स खड़े थे। और लीडर कॉर्गी, सबसे छोटा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे अंडरडॉग, लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों ये भी एक लेसन ही है, लीडर साइज से नहीं बनता, लीडर एटीट्यूड से बनता है। और वो इंजर्ड जर्मन शेफर्ड, कभी कभी स्ट्रॉन्ग लोग भी गिरते हैं, एंड इन दिस केस सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है जब कोई उन्हें छोड़ देता है, पीछे रहने देता है और आगे बढ़ जाता है। अब कहानी का एक और थोड़ा डार्क साइड, कुछ लोग कहते हैं ये डॉग सेफ नहीं थे, कुछ वर्जन्स कहते हैं वो खो गए थे, और कुछ कहते हैं उनका एंड अच्छा नहीं था। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों कभी कभी एंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सफर, और उनका सफर एक मैसेज दे गया। तो आज अपने आप से एक सिंपल सा सवाल जरूर पूछेगा, आप कौन हैं? वो कॉर्गी जो सबको साथ लेकर चलता है, वो जर्मन शेफर्ड जो स्ट्रगल करता है, या वो जो किसी को बीच रास्ते में छोड़ देता है? जिंदगी लंबी रोड ट्रिप है दोस्तों, कभी स्मूथ हाईवे है कभी ब्रोकन रोड, लेकिन अगर साथ सही हो तो सफर हमेशा खूबसूरत लगता है। और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके स्लो होने पर रुक जाते हैं, आपका वेट करते हैं, तो ट्रस्ट में उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलते, और मिलते हैं तो संभलते नहीं। इसी के साथ आज की ये थोड़ी फनी, थोड़ी फिल्मी और दिल को फिर भी छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और याद रखिए असली दोस्ती वो नहीं जो आगे बढ़ जाए, असली दोस्ती वो है जो रुक कर कहती है चल साथ चलते हैं। नमस्कार। बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी। पर असली रीजन, बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। What?

हर्मेन्यूटिक सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक सुपर पावर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी में। आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ एंड तक आप हंसोगे भी, सीखोगे भी और थोड़ा स्मार्ट भी फील करोगे, क्योंकि आज का वर्ड है हर्मेन्यूटिक। सच सच बताओ, पहली बार सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ये कौन सी बीमारी है? ये किसी साइंटिस्ट का नाम है या ये किसी एलियन का पासवर्ड है? मैंने तो जब इसे पहली बार ऑनेस्टली सुना तो मुझे लगा ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला कोई सवाल है। और अगर किसी ने कैजुअली बोल दिया ये एक हर्मेन्यूटिक इशू है तो आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था, अंदर से कुछ समझ नहीं आया ना। चलिए आज इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। हर्मेन्यूटिक होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हर्मेन्यूटिक का मतलब है सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि समझना। और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक जाके समझना। मतलब वर्ड्स के पीछे क्या है, उनका टोन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और इंटेंशन यानी इरादा क्या है। क्योंकि दोस्तों, जो कहा जाता है वो हमेशा वही नहीं होता जो मतलब होता है, और यहीं से शुरू होता है हर्मेन्यूटिक थिंकिंग। चलिए रियल एग्जांपल से समझते हैं जहां हम सब एक्सपर्ट्स हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं। एग्जांपल वन, माँ बोलती है बेटा मैं ठीक हूं। लिटरल मीनिंग माँ ठीक है, बट रियल मीनिंग यानी कि हर्मेन्यूटिक वर्जन, तूने 4 दिन से फोन नहीं किया, मैं याद कर रही थी। समझे? चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, शायद थोड़ी और क्लैरिटी आए। बॉस बोलता है गुड वर्क, आप सोच रहे हैं प्रमोशन आ गया, लेकिन हर्मेन्यूटिक वर्जन कहता है कॉन्टेक्स्ट चेक करो भाई, शायद मतलब हो ठीक है लेकिन और बेटर करो। समझे या अभी भी नहीं? चलिए तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। गर्लफ्रेंड बोलती है मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारी लाइफ में। लिटरल मीनिंग सेल्फ डाउट, रियल मीनिंग यानी हर्मेन्यूटिक वर्जन, तुम्हारी लाइफ में मैं ही सब कुछ हूं, समझे? और अगर आपने गलत समझ लिया तो बस हर्मेन्यूटिक फेल एंड रिलेशनशिप फेल। हम गलती कहां करते हैं दोस्तों? प्रॉब्लम सिंपल है, हम सुनते ज्यादा हैं, समझते कम हैं। हम वर्ड्स पकड़ लेते हैं लेकिन इमोशंस, पीछे के इमोशंस, उन्हें मिस कर देते हैं। कोई गुस्सा करता है, हम बोल देते हैं एटीट्यूड है, लेकिन हो सकता है कि वो हर्ट हो। कोई चुप रहता है तो हम बोल देते हैं एरोगेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहा हो। दोस्तों, अगर हम सब थोड़ा सा हर्मेन्यूटिक यूज कर लें तो आधी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। अब थोड़ा सा फैमिली एंगल से देखते हैं। सोचिए अगर बॉलीवुड में हर्मेन्यूटिक होता, हीरो बोलता मैं तुमसे नफरत करता हूं, हीरोइन तुरंत समझ जाती इसका मतलब है वो मुझसे प्यार करता है, और 3 घंटे की मूवी 10 मिनट में खत्म हो जाती। नो सॉन्ग्स, नो ड्रामा, नो क्लाइमेक्स, कितनी बोरिंग हो जाती ना लाइफ। सोच के देखिए, हर्मेन्यूटिक सिर्फ फनी एग्जांपल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक पावरफुल तरीका है सोचने का, समझने का और जीने का। जब आप किसी बात को समझने की कोशिश करते हो तो आप जज नहीं करते, आप कनेक्ट करते हो, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। जज करना इजी है, समझना एफर्ट लेता है, और आजकल लोग एफर्ट ही नहीं लेना चाहते, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, रिलेशनशिप्स वीक हो रही हैं, और लोग कहते हैं लोग बदल गए। नहीं दोस्तों, मॉडर्न दुनिया और हर्मेन्यूटिक्स की क्राइसिस। आजकल व्हाट्सएप मैसेज आता है ओके, हम सोचते हैं बस एक ओके, और सामने वाला सोचता रहता है गुस्सा है, एटीट्यूड है, मैंने क्या गलती की और क्या नहीं। दोस्तों, ओके का भी हर्मेन्यूटिक होता है, कभी मतलब होता है ठीक है, कभी मतलब होता है बात मत करो, और कभी मतलब होता है मैं बिजी हूं,
और कभी होता है मैं गुस्सा हूं लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। एआई और हर्मनेटिक, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। आजकल हम सब एआई भी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, गूगल और क्या क्या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम जो पढ़ते हैं उसे फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हर्मनेटिक कहता है कॉन्टेक्स्ट को समझो, सोर्स को समझो और इंटेंट यानी इरादे को समझो, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन का एक ही एंगल नहीं होता। और बिना समझे सिर्फ कॉपी कर लेना वो नॉलेज नहीं, शॉर्टकट है। शॉर्टकट कभी लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता, याद रखिए। एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। एक लड़का था अमन, उसकी एक हैबिट थी हर बात को लिटरल लेना। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा घर जल्दी आना। अमन 5 मिनट में घर आ गया। माँ हैरान, अरे इतनी जल्दी कहां से आ गया? अमन बोला, आपने ही तो बोला था जल्दी आना। माँ बोली, अरे मेरा मतलब ये था कि लेट मत होना, दोस्तों डिफरेंस समझे। वर्ड सेम, मीनिंग अलग, यही है हर्मेनिटिक। और आज की सबसे बड़ी बात, जिंदगी सिंपल हो सकती है मेरे दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, सिर्फ रिएक्ट ना करें, रिफ्लेक्ट करें, सिर्फ सुने नहीं उसे फील करें, सोचे और समझें। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्यों कह रहे हैं। तो अंत में, नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले तू मुझे समझता ही नहीं है, आप सीधा बोलना, मैं तो हर्मेनिटिक लेवल पे समझ रहा हूं। वो कंफ्यूज हो जाएगा और आप इंटेलिजेंट लगोगे। विन विन सिचुएशन। आज का वर्ड थोड़ा टफ जरूर था दोस्तों, लेकिन उसका मैसेज बहुत सिंपल और बहुत जरूरी। समझना सीखो लोगों को, सिचुएशंस को, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को, क्योंकि जब आप समझने लगते हो तब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, क्लियर लगती है। इसी के साथ आज का ये फन, फनी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल और थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली स्टोरी तक सिर्फ सुनिए नहीं, समझने की आदत डालिए, क्योंकि याद रखिए जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वर्ड्स से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: देसी मिडिल क्लास लग्जरी। इंडियन मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस उसे यूज करने की परमिशन नहीं होती। ड्राइंग रूम का सोफा सिर्फ गेस्ट्स के लिए, नया डिनर सेट सिर्फ खास मौके के लिए। और वो खास मौका कब आता है? जब डिनर सेट का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है। हम लोग चीजें फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं भाई, और फ्यूचर आता है डीक्लटर करने। What?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

तेरा हाथ पकड़ते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो जितनी भी तकलीफें फुर्र हो जाती हैं।

0: है रिकी, इसकी तो हवा ही निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है गोविंद, तो इसमें हवा भरवा दे।
0: अच्छा भैया,

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था।

अर्जुन के सच्चे सपूतो उठो, और कलयुग में सतयुग के दूतो उठो, कंस का

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रंजीला और आप सुन रहे हैं जाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम।

0: हमने अक्सर दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते देखा है।
1: हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सभी वजीरों में बीरबल सबसे होशियार हैं।
0: मानसिंह भी होशियार हैं,

0: आप हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे भाई हैं।
1: एक बादशाह को अपने सबसे अक्लमंद वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में ऐसे वजीर हैं बीरबल। मान सिंह बेशक आपके भाई हैं, पर ज्यादातर बीरबल की ही राय सही होती है।
0: ये आप कैसे कह सकते हैं कि मान सिंह बीरबल जितने होशियार नहीं है? हम जानते हैं कि एक मौका मिलने पर मान सिंह बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल की तरह अपनी होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए।
1: ठीक है, हमारे पास एक तरकीब है। हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे और हमें यकीन है कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मान सिंह को कल सुबह ही ईरान के लिए रवाना होने को कहेंगे।
0: ईरान? पर क्यों?
1: उनके वापस लौटने पर हम आपको बताएंगे। बीरबल, मान सिंह, हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं, शाह ईरान के लिए हमारा ये पैगाम लेकर। हम उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है।
2: शुक्रिया जहांपनाह। हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम आपका मान जरूर रखेंगे।
3: हमें कब निकलना होगा हुजूर?
1: हम चाहते हैं कि आप आज ही रवाना हो जाएं, शाह ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटें।
2: जैसी आपकी मर्जी जहांपनाह। आदाब हुजूर। हुजूर, मैं हूं मान सिंह और ये है बीरबल। हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं।
4: हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरबार में हमारे अजीज दोस्त बादशाह सलामत अकबर के वजीर मौजूद हैं। हम जानते हैं मान सिंह जी कि आप बादशाह अकबर के रिश्तेदार हैं। राजा बीरबल के किस्से तो हमारे दरबार में भी मशहूर हैं।
2: शुक्रिया जहांपनाह। हुजूर, हम शहंशाह अकबर की ओर से आपके लिए पैगाम लाए हैं।

0: मुझे यकीन नहीं होता, ये नहीं हो सकता, मैं मरना नहीं चाहता, हमारा गुनाह क्या है? और तुम, हमें कल फांसी लगने वाली है और तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब सजा सुनाई जा रही थी तुमने एक शब्द भी नहीं कहा।
1: शांत रहिए मानसिंह जी, यकीन मानिए हमें कुछ नहीं होगा।
0: कुछ नहीं होगा? क्या मतलब कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, हमें कल फांसी लगने वाली है, हम कल मरने वाले हैं।
1: मानसिंह जी धीरज रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे और वो भी जिंदा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बादशाह सलामत ने ऐसा क्यों किया।
0: तुम्हारा दिमाग खराब है, बादशाह ने ऐसा किस लिए किया तुम्हें इस बात की चिंता है, जबकि हमें मुसीबत से निकलने के तरीके सोचने चाहिए।
1: मेरा यकीन कीजिए, हम कल सुबह तक आजाद हो जाएंगे, पर जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना होगा। सुनिए,

0: पहले मुझे फांसी दीजिए हुजूर।
1: नहीं हुजूर, पहले मुझे फांसी दीजिए।
0: नहीं नहीं हुजूर, पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, मुझे पहले लटकाइए।
1: नहीं, मैं शहनशाह का रिश्तेदार हूँ, पहले फांसी मुझे दी जाए।
0: आप जहांपनाह के साले साहब हैं तो क्या हुआ, मैं उनका सबसे भरोसेमंद वजीर हूँ, पहले मुझे फांसी लगाई जाए।
2: आप दोनों पागल तो नहीं हो गए? क्या आपको डर नहीं लगता? आप मरने के लिए इतने बेताब क्यों हैं?
0: डरना किस लिए हुजूर, ऐसे इनाम के लिए तो हम खुशी से मरने को तैयार हैं।
2: इनाम? कैसा इनाम
0: हुजूर? हमारे दरबार के राज पुरोहित ने ऐलान किया था कि आज यहाँ पर पहले जिसको फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में शाह बनेगा, और जिसको बाद में मिलेगी वो प्रधानमंत्री।
2: ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता।
1: ये सच है हुजूर, हमारे राज पुरोहित कभी गलत नहीं साबित हुए। पहले मुझे फांसी पे लटका दीजिए हुजूर।
0: हुजूर, मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, इनकी बातें तो सच लगती हैं।
2: हाँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बिना नाराज किए हम उनका कहा कैसे टाल सकते हैं?
0: आप इन दोनों के साथ उन्हें पैगाम भेज सकते हैं कि बिना इन दोनों का जुर्म जाने आप इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते। इस तरह आप इसका जिम्मा वापस शहंशाह पर ही डाल दें।
2: तुम सही फरमा रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। आप दोनों आजाद हैं, हमें कुछ गलत फहमी हो गई थी। आप दोनों हमारा पैगाम लेकर झांपना के पास लौट जाएं।
1: जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आदाब जहांपना,
3: आपका स्वागत है। कैसी रही आपकी यात्रा?
0: अच्छी रही हुजूर, शुक्रिया।
3: अच्छा अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार मानी, बताइए आपने उस मुसीबत का सामना कैसे किया?
1: जी हुजूर, हमें बताइए कि हमें उस मुसीबत में क्यों डाला गया, हमारी गलती क्या थी?
3: कोई गलती नहीं थी, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, मगर हम ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आप वापस कैसे लौटे।
1: हुजूर, बीरबल की होशियारी की वजह से ही आज हम जिंदा हैं।

0: हम माफी चाहते हैं आप दोनों को इस मुसीबत में डालने के लिए, पर यकीन कीजिए हमने सिपाही के साथ एक दूसरा पैगाम भी भेजा था। वो पैगाम शाह ईरान को दिया जाता आपको फांसी से बचाने के लिए। बीरबल, आपने फिर साबित कर दिया कि आपको कोई मात नहीं दे सकता। आप किसी भी मुसीबत का होशियारी से सामना कर सकते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश,
1: शाबाश बीरबल।
2: दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: हुजूर, ईरान का एक सौदागर है जिसे कोई शिकायत है और आपसे मिलना चाहता है।
1: ठीक है मान सिंह जी, उसे इजाजत है।
2: शमशेर सिंह दरबार में पेश हो।
3: आदाब हुजूर।
1: खुश आमदीद, सुना है आप ईरान से हमारे यहाँ आए हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? उम्मीद है आपको यहाँ अच्छा लग रहा होगा।
4: माफ कीजिएगा हुजूर, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन अच्छा लगना तो दूर की बात है, मैं तो यहाँ आकर बर्बाद हो गया हूँ।
1: बर्बाद? कैसे और क्यों? कहिए क्या समस्या है?
4: हुजूर, मैं ईरान से व्यापार के लिए कुछ सामान लाया था जिनकी कीमत 500 सोने की अशर्फियाँ थी, कुछ शानदार ऊन के कपड़े और कुछ बेहतरीन कारीगरी के नमूने।
1: तो समस्या क्या है? क्या आपको अपने सामान की सही कीमत नहीं मिल रही? वैसे हिंदुस्तानी सौदागर मोल भाव करने में माहिर होते हैं।
4: नहीं हुजूर, समस्या ये नहीं है। मैं ईरान से जब यहाँ आ रहा था, तब सफर के दौरान मैं एक हिंदुस्तानी व्यापारी से मिला। उसने मुझे अपना सामान उसके गधों पर लादने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो अपना सारा सामान बेच कर लौट रहा था।

0: खड़ी हुई। पर घबराइए मत, हम इस मामले को जरूर सुलझाएंगे। बताइए कौन है वो व्यापारी, आप जानते हैं वो कहाँ रहता है?
1: जी हुजूर, उसका नाम दिलावर है और मैं उसका पता जानता हूँ।
0: सिपाहियो फौरन इस पते पर जाओ और उस दिलावर को हमारे सामने पेश करो।
2: आदाब हुजूर।
0: बताओ क्या तुम इस आदमी को जानते हो?
2: जी हुजूर, मैं इसे जानता हूँ, ये शमशेर सिंह है ईरान से।
0: ओ, तो तुम इसे जानते हो, बताओ तुमने इसके साथ बेईमानी क्यों की?
2: माफ कीजिएगा हुजूर, पर ये सच नहीं है, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, वो सामान मेरा अपना था। जब मैं ईरान से लौट रहा था तब ये मेरे पास आया और मेरे साथ हिंदुस्तान आने की गुजारिश की, क्योंकि ये हिंदुस्तान देखना चाहता था और इसे रास्ता मालूम नहीं था। मैं वैसे भी ईरान से सामान खरीद कर लौट रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं।
3: नहीं नहीं हुजूर, ये झूठ है, इसके पास कोई सामान नहीं था। मुझे इसने कहा कि ये अपना सारा पैसा जुए में हार गया है और मुझे अपने गधे कम किराए में देने लगा, ये कहते हुए कि मेरी बचत हो जाएगी और इसे भी लौटने के लिए पैसे मिल जाएंगे।
2: नहीं, ये सरासर झूठ है हुजूर, मैंने सिर्फ इसे अपने साथ सफर में लिया था, सामान मेरा अपना है। जब हम आगरा पहुँचे तो ये मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये मेरे खिलाफ दरबार में झूठी शिकायत करेगा।
0: बहुत हो चुका, बस करो। शमशेर सिंह, अगर वो सारा सामान आपका है तो आप अपने सामान को पहचान पाएंगे, ठीक है? और अगर दिलावर सच बोल रहा है तो आप अपने सामान को नहीं पहचान पाएंगे।
1: जी हाँ हुजूर।
2: नहीं हुजूर।
0: क्या मतलब, तुम इन्हें अपने सामान की पहचान क्यों नहीं करने देते?
2: हुजूर, सफर के दौरान इसने मेरे सामान में काफी दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सारा सामान दिखाया था, तब तो ये आसानी से पहचान सकता है मेरे सामान को।
3: नहीं हुजूर, ये उल्टी बात कर रहा है, इसने मेरे सामान में दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सामान दिखा दिया।
2: हुजूर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, आप मेरे नौकर से भी पूछ लीजिए जो मेरे साथ था, वो आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा।
3: नहीं नहीं हुजूर, इसका नौकर भी झूठ बोलेगा, इसने उसे भी अपनी साजिश में शामिल किया होगा। हुजूर, मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर मैं सच कह रहा हूँ, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं।
0: बीरबल, मेरे ख्याल से अब तुम ही इस समस्या को सुलझा सकते हो और असली मुजरिम की पहचान कर सकते हो।
4: जी हुजूर, मुझे यकीन है मैं असली मुजरिम को जरूर पहचान सकता हूँ।
0: तो फिर देर किस बात की है, ये मामला जल्द से जल्द सुलझाओ।
4: जी हुजूर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, एक या दो दिनों में मुजरिम आपके सामने होगा, मुझे पूरा यकीन है।
0: ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो फिर हम इंतजार करेंगे, तब तक के लिए शमशेर सिंह आप हमारे मेहमान रहेंगे, मगर ध्यान रहे अगर आप मुजरिम साबित हुए तो आपको हमारे यहाँ लंबे समय तक मेहमान बनकर रहना पड़ेगा, कैद खाने में।
3: मैं समझ सकता हूँ हुजूर।
0: और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है दिलावर, तुम ये शहर छोड़कर कहीं मत जाना जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता।
2: जैसे आपकी मर्जी हुजूर, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैंने सिर्फ सच ही कहा है।
0: बीरबल, हमें उम्मीद है कि तुम इन दोनों में से मुजरिम कौन है ये साबित कर दिखाओगे।
4: जी हाँ, शुक्रिया जहाँपना, मुझे यकीन है कि एक या दो दिनों में मामला सुलझ जाएगा।

0: कहाँ है बीरबल? वो अब तक दरबार में नहीं पहुँचा।
1: आदाब हुजूर।
0: बीरबल, कहाँ थे तुम? और शमशेर सिंह के मसले का क्या हल निकला? क्या तुमने मुजरिम को पहचान लिया?
2: जी हुजूर, मुझे सच्चाई मालूम हो गई है और ये साबित भी कर सकता हूँ।
0: ओह, बहुत खूब, शाबाश। तो बताओ, फौरन बताओ, कौन झूठा है?
2: जी जापना, दिलावर झूठा है और बेईमान भी, और शमशेर सिंह सच बोल रहा है।
0: दिलावर? हम तो समझे थे कि वो सच बोल रहा था। आखिरकार वो आगरे का व्यापारी है और उसकी अपनी दुकान है, तो वो क्यों बेईमानी करेगा? तुम्हें पूरा यकीन है? आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला?
2: हुजूर, कल शाम की बात है, मैं और मानसिंह जी दिलावर के दुकान पर गए। उसके नौकर को दुकान छोड़ जाते हुए देख हमने एक ढाबे तक उसका पीछा किया।
3: आइए, कहिए क्या खाएंगे आप? काफी लंबा सफर करके आए हैं। अगर

0: जी बा रहे हैं क्या आप?
1: जी मैं जयपुर का एक व्यापारी हूँ। दरअसल हम यहाँ कुछ ईरानी कारीगरी का सामान खरीदने आए हैं वापस जयपुर ले जाकर बेचने के लिए। क्या आप बता सकते हैं हमें ये कहाँ मिल सकता है?
2: माफ कीजिएगा हुजूर, मैंने दरअसल आप लोगों को ईरानी सामान के बारे में कुछ पूछते हुए सुना।
1: जी बिल्कुल, क्या आप हमें ऐसी कोई जगह के बारे में बता सकते हैं?
2: मेरा नाम सुखी राम है जनाब, मैं एक बहुत अच्छे व्यापारी के साथ काम करता हूँ, उनका नाम दिलावर है। वो हाल ही में ईरान से काफी शानदार सामान लेकर लौटे हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप हमें वो सामान अभी दिखा सकते हैं?
2: हाँ जरूर जनाब, मेरे साथ चलिए। जनाब आप थोड़ी देर यहीं रुके, अगर वो ज्यादा व्यस्त नहीं है तो मैं आपको उनसे जल्द से जल्द मिलवाता हूँ।
1: जरूर जरूर, जरा जल्दी कीजिएगा।
2: जनाब मैं अभी अभी एक व्यापारी से मिला ढाबे पे, जो ईरानी सामान खरीदना चाहता है।
0: ओह शाबाश, बहुत खूब, कहाँ है वो?
2: वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अंदर बुलाऊं?
0: जरूर जल्दी आइए आइए।
1: पता चला है कि आप ईरानी सामान बेचते हैं?
0: जी जरूर, इत्तेफाक से मैं हाल ही में ईरान से खरीदी करके लौटा हूँ।
1: क्या आप हमें वो सामान दिखा सकते हैं?
0: बिल्कुल, सारा सामान लेकर आओ।
1: अच्छा तो आप इन चीजों का क्या दाम लगाएंगे?
0: आप सारा सामान खरीद लेंगे तब मैं सारे सामान का दाम 1000 सोने की मोहरे लगाऊंगा।
1: हम दोनों को ये नहीं लगता कि ये सामान बहुत ही बेहतरीन किस्म का है, इससे भी बढ़िया सामान देखा है। हम सिर्फ इसकी आधी कीमत दे सकते हैं, सिर्फ 500 सोने की मोहरे।
0: आधी कीमत? बेहतरीन किस्म का नहीं है?
1: दरअसल मेरे दोस्त को इन चीजों में कुछ खराबी नजर आ रही है, अब हम इसके लिए सिर्फ 300 सोने की मोहरे ही देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है।
0: ठीक है 300 मोहरे ही सही।
1: ठीक है, सौदा पक्का, हम कल सवेरे पैसों के साथ आएंगे और ये सारा सामान ले जाएंगे।
3: हम समझे नहीं बीरबल, तो इससे दिलावर झूठा कैसे साबित हुआ?
1: हुजूर कोई सौदागर इतनी जल्दी अपने सामान की खामियां कैसे कबूल करेगा, या फिर कम कीमत लेने को इतनी जल्दी क्यों तैयार होगा? मैं तभी समझ गया कि ये सामान दिलावर का नहीं है और इसीलिए वो कोई भी कीमत लेने को तैयार था।
3: तुम ठीक कह रहे हो।
1: जब मुझे यकीन हो गया कि दिलावर झूठ बोल रहा है, हमने इसके नौकर को झूठ बोलने की सजा से डराकर उससे सच्चाई उगलवाई और अब वो दिलावर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है।
3: शमशेर सिंह और दिलावर को दरबार में पेश किया जाए। तुम्हें एक शरीफ आदमी को जिसने तुम्हारी मदद की उसे धोखा देते हुए शर्म आनी चाहिए। हम तुम्हें साल भर कैद की सजा देते हैं और शमशेर सिंह को बुरी तरह परेशान करने के लिए बतौर जुर्माना तुम्हें उन्हें 500 सोने की मोहरें अदा करनी पड़ेगी। सिपाहियों दूर ले जाओ शख्स को हमारी नजरों से।
2: शुक्रिया हुजूर।
3: शुक्रिया अदा करो बीरबल का, जिसने दिलावर की बेईमानी अपने लाजवाब अंदाज में साबित की।
4: दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़, आरजे रंजीला के साथ।

0: जी कौन है आप और आपको क्या चाहिए?
1: मैं गंगू, मैं राजा बीरबल से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे इंसाफ चाहता हूँ।
0: लेकिन राजा बीरबल आराम कर रहे हैं, उन्हें आप लोग कल दरबार में जाकर क्यों नहीं मिलते?
1: नहीं नहीं, हमें अभी उनसे मिलने दीजिए, ये आदमी एक चोर और झूठा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें आज ये मामला सुलझाने दीजिए।
0: ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ अगर वो आपसे अभी मिल सकते हैं, आप यहीं ठहरिए। हुजूर, बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, वो आपसे इंसाफ चाहते हैं। मैंने उनसे कल दरबार में मिलने को कहा, पर वो अभी ही मिलना चाहते हैं।
2: ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ।
0: अंदर आइए, राजा बीरबल आपसे अभी मिलेंगे।
2: हाँ जी, क्या समस्या है? जरा ठहरिएगा, कौन हो सकता है ये?

0: आदाब हुजूर, आपने मुझे बुलवा दिया होता अगर कुछ काम था तो।
1: नहीं, मैं सिर्फ बागीचे में सैर कर रहा था, सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं।
2: आदाब हुजूर।
1: ये कौन है बीरबल?
0: मैं खुद भी जानना चाहता था हुजूर, इन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन मैंने बाद में आने को कहूंगा।
1: नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ करते देखना चाहता हूँ, शुरू करो।
0: हाँ तो आप कहिए, कहिए आप दोनों कौन है और समस्या क्या है?
2: जहाँ पना, हुजूर मैं गंगू तेली हूँ, मैं तेल बेचता हूँ। मैं शहर के काफी व्यापारियों को और दुकानों में तेल बेचता हूँ। आज मेरा कारोबार अच्छा हुआ और इसकी दुकान से गुजर रहा था, ये लच्छूराम कसाई है, इसने मुझे अंदर बुलाया।
3: ए, तेल वाले, इधर आओ, मुझे थोड़ा तेल दो।
2: जी जनाब, कितना तेल चाहिए आपको?
3: सोचने दो, मुझे एक माप दे दो।
2: जनाब ये लीजिए, 2 रुपए हुए जनाब।
3: 2 रुपए? ये तो ज्यादा है, तुम तो बेईमानी कर रहे हो।
2: जनाब तेल महंगा हो गया है, मुझे व्यापारी को भी देना पड़ता है और कमाई इसमें कम है। मैं आपको ठग नहीं रहा, आप किसी से भी पूछ लें।
3: खैर सभी यही कहते हैं, तुम हमें ठग रहे हो। खैर ये लो पैसे, 1 चांदी का सिक्का है, अब मुझे छुट्टे दे दो। तुम थक गए होगे सारा दिन ये बोझा उठाकर, क्यों ना अंदर हाथ धोकर मेरे साथ थोड़ी लस्सी पी लो, फिर काम पर चले जाना, क्या ख्याल है?
2: अरे क्या कर रहे हैं आप, ये मेरे पैसे हैं।
3: छूटे, ये मेरे पैसे हैं, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो।
2: तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर हमने झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए हम यहाँ आए हैं, अब आप ही मेरे पैसे वापस दिलवा सकते हैं।
0: तुम्हें क्या कहना है इस बारे में?
3: जनाब ये आदमी एक झूठा और चोर है, दरअसल बात कुछ ऐसी थी।
2: जनाब जनाब, क्या आपको तेल चाहिए?
3: नहीं शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है।
2: जनाब आज मेरी बोनी तक नहीं हुई, 1 नाप ले लीजिए मुझे, 1 नाप।
3: देखो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास 1 महीने का काफी तेल है।
2: जनाब मैं आपको छूट दूंगा, जनाब जनाब 1 नाप ले लीजिए।
3: ठीक है मुझे 1 माप दे दो।
2: शुक्रिया जनाब, 2 रुपए हुए इसके।
3: ठीक है, ये लो पैसे।
2: जनाब क्या मैं हाथ मुंह धो सकता हूँ? सारा दिन ये थैला लटका के मैं थक गया हूँ, सिर्फ हाथ मुंह धोकर थोड़ा चुस्त होना चाहता हूँ।
3: ठीक है पर जल्दी करो, हाथ मुंह वहां धो लो। ए, ये क्या कर रहे हो? रुको, चोर कहीं का, मेरे पैसे वापस करो।
2: नहीं ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा थैला है।
3: तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मेरे पास भीख मांगने आए, मैंने मदद की, तूने ये क्या किया, मेरे पैसे चुराए?
2: तुम मुझे लूटना चाहते हो, ये मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
3: लोग जमा हो गए और सलाह दी कि आपके पास आए हुजूर, अब आप ही मेरी मदद करें हुजूर।
2: नहीं जनाब ये मेरे पैसे हैं, ये आदमी झूठ बोल रहा है।
1: ओ बीरबल, अब तुम ये समस्या कैसे सुलझाओगे? कोई गवाह भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे?
0: हुजूर इस समस्या का हल है, और माफ कीजिएगा हुजूर पर आप गलत थे, एक गवाह है इस बात का।
2: हुजूर आपकी गलत फहमी है, जब उसने पैसे लेना चाहे तब वहाँ कोई नहीं था।
0: नहीं तुम गलत हो, एक गवाह मौजूद था, वो पैसों का थैला, वो ही गवाह है।
1: बीरबल तुम ठीक तो हो? भला पैसों का एक थैला गवाह, एक थैला सच्ची बात कैसे कह सकता है?
0: हुजूर बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मुझे यकीन है ये थैला जरूर बोलेगा।
1: कमाल है, ये तो काफी दिलचस्प होगा, जल्दी करो।
0: एक बर्तन में पानी लेकर आओ। अब ये पैसों का थैला मुझे दो। हुजूर सच्चाई सामने है।
3: तेली सच बोल रहा था, ये पैसों का थैला उसी का है।
1: तुम ये कैसे कह सकते हो बीरबल, तुम्हें यकीन है?
3: मुझे पूरा यकीन है हुजूर, मैं साबित कर सकता हूँ।
1: तो साबित करो।
3: हुजूर, अगर आप देखें तो पानी के ऊपर तेल की एक परत है, ये तेल की परत इन सिक्कों में से आई, और ये तेल सिर्फ तेली के हाथों से ही आ सकती है। जब वो थैले में सिक्के डालता था और निकालता था, सिक्कों पे तेल लगने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता।
1: शाबाश शाबाश, हमें खुश कर दिया तुमने, बड़े होशियार हो तुम, बहुत खूब।
2: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं लालची हो गया था।
1: नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हें इस आदमी को वो पूरी रकम लौटानी होगी जो तुमने चुराने की कोशिश की, और इस जुर्म के लिए 1 महीने की कैद।
2: शुक्रिया जहांपनाह।
1: बीरबल, तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं। शाबाश बीरबल, शाबाश।
3: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
4: इस साल ठंड बहुत ज्यादा है।
5: जी हाँ जहांपनाह, आजकल लोग घर से बाहर निकलने से झिझकते हैं।
4: हाँ, पर लोगों को काम करना तो पड़ेगा ही, चाहे ठंड हो या ना हो।
5: वो तो है, पर जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो ज्यादातर लोग घर पर ही रहना पसंद करते हैं।
4: ओह, ये पानी तो जैसे बर्फ बन गया हो। आप ठीक कह रहे हैं लाला जी, इतनी ठंड में कौन बाहर निकलेगा।
6: माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे ऐसा नहीं लगता।
4: बीरबल, आपको हर वक्त हमारे खिलाफ जाना जरूरी नहीं है।
6: माफी चाहता हूँ जहांपनाह, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुश्किलों में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
4: आप कहना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं?
6: जी हाँ हुजूर, मैं यही कहना चाह रहा था।
4: मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए एक हद से पार नहीं जा सकता।
5: आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ।
6: जहांपनाह, आपके राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो हालात की वजह से थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
4: क्यों ना तुम अपनी इस बात को साबित कर दिखाओ। क्या तुम ऐसे आदमी को ला सकते हो जो सारी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सके? हम उस आदमी को इनाम में 10 सोने की अशर्फियां देंगे।
6: जी हाँ हुजूर, इतनी कम रकम के लिए भी कोई न कोई इस काम को करने के लिए तैयार हो ही जाएगा।
5: मैं इस बात को यकीन करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। पहली बात तो कोई भी इंसान ये पता चलने के बाद कि पानी कितना ठंडा है, इसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कोई मूर्ख स्वीकार कर भी ले तो सुबह तक बच नहीं पाएगा।
6: जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसे आदमी को आज ही ढूंढ सकता हूँ।
4: ठीक है, आप इस बात को साबित कीजिए और ऐसा आदमी ढूंढिए। इस बात का फैसला आज ही हो जाए। मुझे यकीन है कि इस बार आप गलत साबित हो जाएंगे।
6: हुजूर आला, मैं आज ही ऐसा आदमी ढूंढकर शाम को दरबार में पेश कर दूंगा। जहांपनाह, अपनी चुनौती स्वीकार करने वाला मुझे मिल गया है, इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए।
4: उसे बुलाएं? बीरबल, हम जरूर मिलना चाहेंगे उससे।
7: गंगाराम हाजिर हो।
8: आदाब जहांपनाह।
4: क्या बीरबल ने समझा दिया है कि तुम्हें क्या करना है?
9: जी हाँ हुजूर, मुझे सारी रात आपके बगीचे वाले तालाब में खड़े रहना होगा।
4: क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम तालाब में खड़े रहकर अपनी जान गंवा सकते हो, या तुम्हें वहाँ की ठंड का अंदाजा नहीं?
9: जहांपनाह, मैं जानता हूँ कि तालाब का पानी कितना ठंडा होगा।
4: हमें लगता है कि 10 अशर्फियों के बदले ये करना बहुत बड़ी मूर्खता है। बीरबल, इस पर नजर रखने के लिए 2 सैनिक तैनात रहेंगे। यह आदमी आज रात हमारा मेहमान है, इसकी अच्छी तरह खातिर की जाए। क्या पता आज की रात इसकी आखिरी रात हो। तो हम आप दोनों से सुबह मिलेंगे। तो बताइए बीरबल, क्या हाल है आपके आदमी के?
6: वो बाहर ही रुका है, क्यों ना उसी से पूछ ले।
7: गंगाराम हाजिर हो।
9: आदाब जहांपनाह।
4: तो कहो, कैसी रही रात?
9: हुजूर, आसानी से तो नहीं, पर ऊपर वाले की दया से किसी तरह कट गई।
4: तुम कहना चाहते हो कि तुमने सारी रात तालाब में गुजारी? मुझे यकीन नहीं आता।
9: ये सच है जापाना, ये सिपाही मेरे गवाह है।
4: सच बताओ, क्या इस आदमी ने सारी रात तालाब में गुजारी?
10: जी हाँ जापाना, सुबह होने पर ही ये पानी से बाहर निकला। हम दोनों ने कड़ी नजर रखी।
4: हमें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है, कैसे किया तुमने ये? सारी रात क्या किया वक्त बिताने के लिए?
9: हुजूर शुरू में तो बहुत मुश्किल था, ठंड के मारे मैं अकड़ गया था। फिर तालाब के किनारे एक दीव को देखने लगा और सारी रात उसे देखते और भगवान का नाम लेकर गुजार दी।
4: हाँ हाँ, अच्छा तो ये राज है, तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल रही होगी इसलिए तुम इतनी देर उस ठंडे पानी में रह सके। हम जानते थे, वरना ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता।
9: पर जापना,
4: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे धोखा करने की? फिर भी हम तुम्हें सजा नहीं देंगे क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल था। परिणाम के बारे में तुम भूल ही जाओ।
9: पर जापना,
4: बस बहुत हो चुका, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। सिपाहियों, इस आदमी को दरबार से बाहर ले जाओ। बीरबल, इस बार आपको अपनी हार माननी ही पड़ेगी, आप गलत साबित हुए।
6: आपके खिलाफ जाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ।
4: कोई बात नहीं बीरबल, सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से आज हम ईरान के शाह के लिए तोहफे का फैसला करने वाले थे, क्या आपके पास कोई सुझाव है?
6: माफी चाहता हूँ हुजूर, पर कुछ घरेलू परेशानी की वजह से मैं अभी घर जाने की इजाजत चाहता हूँ। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा।
4: जरूर बीरबल, आप जा सकते हैं पर जल्द ही लौट आइएगा। बीरबल कहाँ है, क्या वो लौटे नहीं?
6: नहीं हुजूर, अभी तक नहीं लौटे। क्या उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा जाए?
4: हाँ, एक सिपाही को भेजिए और उन्हें जल्द दरबार पहुँचने को कहिए, तब तक आप बाकी कार्यवाही कर सकते हैं।
6: जापना, इस साल देश भर से आए लगान की रकम कुछ इस तरह थी।
10: आदाब जापना, बीरबल ने कहा है कि वो खाना खा रहे हैं और खाना खाकर दरबार में हाजिर हो जाएंगे।
4: आज बीरबल को हो क्या गया है, इतनी देर से तो वो कभी खाना नहीं खाते। हमारे ख्याल से अब तक उनका खाना हो गया होगा। तुम एक और घोड़ा लेकर उनके घर जाओ और उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके दरबार पहुंचे। तुम अकेले क्यों आए? बीरबल कहाँ है? क्या हमने तुमसे कहा नहीं था कि उन्हें साथ लेकर आना?
10: हुजूर, मैं उनके घर गया था आपका संदेशा लेकर, पर बीरबल भोजन तैयार कर रहे थे और उन्होंने आपको कहने के लिए कहा है कि वो जैसे ही हो जाएगा वे दरबार में हाजिर हो जाएंगे।
4: हमारे ख्याल से हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। हम इसी वक्त उनके घर जाएंगे।
9: जापना, आदाब जापना।
6: जहांपना, अगर मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूँ।
4: क्या हो रहा है बीरबल? सिपाही ने कहा कि आप खाना खा रहे हैं, और ये सब माजरा क्या है?
6: हुजूर, वो जो ऊपर हांडी टंगी हुई है उसमें मेरा भोजन है, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। अफसोस अब तक बनी नहीं है।
4: बीरबल, आप ठीक तो है? आग से इतनी ऊंचाई पर हांडी टांगने से खिचड़ी कैसे पकेगी?
6: हुजूर, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्यों नहीं पकेगी? हांडी सीधे आग के ऊपर टंगी है।
4: बीरबल, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाने को जब तक गर्मी ना मिले वो पकेगा कैसे? और अगर आप हांडी को आग से इतना ऊपर रखेंगे तो गर्मी कैसे पहुँचेगी?
6: जहांपना, मैंने सोचा कि अगर गंगाराम को दूर लगे एक दिए से गर्मी मिल सकती है तो आग से थोड़ा ऊपर टांगने पर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
4: अच्छा अच्छा, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है, आप जीते। अपने आदमी के साथ आप जल्दी दरबार में हाजिर हों, उसे उसका इनाम मिल जाएगा।
11: शुक्रिया हुजूर।
4: और ये आपके लिए बीरबल, एक शहंशाह को उसकी गलती का एहसास कराने में बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये दिखाने के लिए आपने जो रास्ता चुना वो भी बड़ा दिलचस्प था। शाबाश।
12: राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह।
6: शुक्रिया हुजूर।

0: दोस्तों, आपने अभी सुना अकबर और बीरबल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मेरी दुनिया में। तब तक आपकी दोस्त आरजे रंजिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे अकबर और बीरबल की कहानी।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत।
1: सबसे पहले सुनिए ये गीत

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जुन मनीष आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान भाइयों कैसे हैं? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमारे किसान साथी अब खेती किसानी से फुर्सत हो गए हैं, क्योंकि गेहूं का जो सीजन था उन्होंने गेहूं अपने घर में बिल्कुल उगा के रख लिया है। अब हमारे किसान साथी बिल्कुल फ्री होंगे और अपने रिश्तेदारी जा रहे होंगे, आ रहे होंगे और यहाँ पर गप सड़ापा हो रही होगी। तो अपने किसान साथियों से कहना चाहते हैं कि आने वाले फसल की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा किसान साथी कभी भी फ्री नहीं रहता है। और साथियों हमें ध्यान रखना है कि इस बार हमें कुछ हटके करना है, क्योंकि जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे सभी से तब तक हमारी पहचान कैसे बनेगी? जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तब तक लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किसान उस गांव का रहने वाला है? तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बार हमें कुछ नया करना है और कुछ नई फसल उत्पादन हमें करना है। तो आप सुनिए हमारा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर आप खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और श्रोता साथियों हम बता देना चाहते हैं कि हमारे किसान साथियों के लिए हम नई नई पद्धति और नई नई तकनीकी से हमारे किसान साथी कैसे खेती कर सकते हैं उस पर हम एक नजर डालते हैं। और साथ साथ में साथियों हमने कुछ दिनों से हम अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में खेती किसानी में हमारे किसान साथी किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उस पर हम नजर डालते हैं और अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं। और आज चूंकि हमने विषय चुना है गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, कुछ नई पद्धति से अपनाएं। और हमने विषय सोचा है कि ग्रीन हाउस में कैसे खेती करें, ये हमारे किसान साथियों के लिए एक अलग विषय होगा, लेकिन इसकी जानकारी आपको होना चाहिए और हमें अपने खेतों में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा झाबुआ जिला चूंकि हमारे खेती किसानी के लिए सही नहीं है, पथरीला इलाका है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद हमारे किसान साथी कुछ ना कुछ उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। आजीविका को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा कि किस तरीके से हम खेती के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, खेती के साथ साथ हम नर्सरी भी लगा सकते हैं, खेती के साथ साथ हम आजीविका को चलाने के लिए कुछ छोटे छोटे कुटीर उद्योग यानी व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। तो आज के हमारे जो कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज ग्रीन हाउस में किस तरीके से खेती कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, यदि हम फसल बोते हैं तो उसको पानी बार बार देना पड़ता है। तो ग्रीन हाउस आकर क्या है, किस तरीके से खेती होती है, इस पर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है। तो आइए सुनते हैं, लेकिन सुनने के पहले हम लेते हैं एक संगीतमय विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो भील टांटिया 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप? अब भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ। जब से हमारे क्षेत्र के किसानों ने उन्नत खेती को अपनाना चालू कर दिया है, तब से तो बाहर आ गई है। और वाकई में लगता ऐसा है कि विषय को ध्यान से सुन रहे हैं सभी किसान भाई, और उन्नतशील प्रजातियों को भी ला रहे हैं अपने खेत में लगाने के लिए, क्योंकि अब उनका विश्वास जाग चुका है टिकाऊ खेती की तरफ। खैर किसान भाइयों, विचार और विषय सुनने के लिए हम दौड़ लगाते हैं अपने खेतों में और बात करते हैं अपने किसान भाइयों से, क्या सोचते हैं वो, जिससे कि हमें उनकी धारणा का पता चले, यानी आज और हम में।
1: मैं विवेक यादव, मैं एक मध्यवर्गीय सुभाष नगर किसान हूँ। भैया, अगर हम अपनी नई तकनीकों को आज हम अपने खेतों में लगाते हैं तो भैया लागत आती है, पर यह लागत एक बार की है, जिससे हम भविष्य में काफी समय तक इससे लाभ ले सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया लगाओ एक बार और काटो बार बार।
2: मैं सुंदरदास जगदीशपुर का किसान, हमारे ख्याल से आज स्थिति को देखते हुए नई तकनीकों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग पिछड़ जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, नई तकनीक को अपनाना थोड़ा महंगा जरूर है।
3: मैं जवाहर नगर का एक छोटा सा किसान हूँ, मेरा नाम अभिषेक है। भैया यह बात तो सही है कि खेती में अगर हम वैज्ञानिक तकनीक लगाएं तो इससे थोड़ा खर्चा तो आता है, पर इससे आने वाले समय में बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले पंप सेट लगाया था और मैं अभी तक उससे सिंचाई कर रहा हूँ।
0: किसान भाइयों की बात को ध्यान से सुनते हुए मुझे एक धारणा का पता चला भाइयों, कि हमारे सभी किसान भाई सोचते हैं कि भाई अगर हम उन्नतशील खेती करना चाह रहे हैं और नई नई जो तकनीकें हमें जो विशेषज्ञ बताते हैं उनको अपनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए निवेश करना बड़ा जरूरी है, और निवेश भी मामूली नहीं, बड़ा निवेश है किसान भाइयों। तो इस निवेश को किसान कैसे देखे, क्या खर्चा है उसके लिए या कि एक कमाई का नया साधन? और इसी बात से एक विषय जो सामने आया है कि निवेश एक बार लाभ बार बार, यानी एक बार निवेश करने के बाद आप लाभ बार बार कैसे लें, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों की धारणा को और मजबूती से समझते हैं और चलते हैं बातों बातों में, जो कि है एक लघु नाटिका।

0: ये जो पाइप है ये सामियाना का पाइप थोड़े ना है। ऊपर से ये बताओ, जो सामियाना कहीं पन्नी का लगता है क्या है?
1: ये तो बात सही कह रहे हो भैया, लेकिन है क्या ये बवाल?
2: अरे भाई कल्लू, कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, हम लोग अच्छी खेती चाहते हैं, इसके लिए पाली हाउस लगा रहे हैं।
0: हाँ, और तुम्हें पिछली बार की बात याद है, संगम भैया कह रहे थे कि हम लोगों को टिकाऊ खेती करनी चाहिए, और टिकाऊ खेती के लिए अगर हम पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
1: इसके लिए पैसा तो बहुत खर्च किया दिलशान भैया।
2: हाँ, थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन भाई वो सब बराबर हो जाएगा, क्यों दिलशान भाई?
0: बिल्कुल भाई, आज हम पैसा लगा रहे हैं, कल पैसा फिर आएगा और परसों फिर आएगा।
1: इससे अच्छा तो आप अपने पान की दुकान खोल लेते, उससे तो रोज रोज आमदनी आती।
2: तुम भी यार कल्लू, हद है।
0: भैया हम लोग हैं किसान, हम लोग खेती करेंगे तभी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, पान और बीड़ी सूरती बेच के कुछ नहीं होने का है।
2: और वैसे भी कल्लू, छोटा बिजनेस नहीं बड़ा बिजनेस करो,
0: और आज की नहीं आगे की सोचो
3: भाई। पॉली हाउस में लगाओ लागत एक बार और कमाओ बार बार।
0: संगम भैया राम राम,
3: राम राम भैया राम राम।
2: संगम भैया कैसे हैं?
3: मैं तो भैया आप ही जैसा हूँ, एकदम टकाटक।
2: संगम भैया, यहाँ मैं और दिलशान भाई पॉली हाउस के लिए जो सामान था ले आए हैं, आप जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं, क्यों दिलशान भाई?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम भैया, जिस दुकान पे आपने कहा था हमने सामान वहीं से लिया, इससे और दुकान से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है।
1: संगम भैया, कितना भी सस्ता पड़ा हो लेकिन है तो महंगा ही।
3: अरे कल्लू भैया, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन आज तो जरूर ये महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यही तो आपको बरकत दे के जाएगा, तब आपका जो पान का खोका है ज्यादा महंगा महसूस होगा और ये पॉली हाउस बहुत ही सस्ता लगेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो संगम भैया। कल्लू भैया, आज हम ये पॉली हाउस लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि अगली बार इसको उखाड़ के बेचना पड़ेगा, एक बार ये लग गया तो सालों साल चलता है।
2: अरे दिलशान मियाँ, किसे समझा रहे हो, तुम तो जाओ कल्लू अपनी पान की दुकान खोलो, और हम भी तुम्हारे वहाँ आएंगे 10 साल बाद पान खाने।
1: चलो पान वान भैया छोड़ो, ये बताओ इस पॉली हाउस जो लगा रहे हो उससे क्या क्या फायदे होंगे?
3: अरे भैया, पॉली हाउस में ऐसी फसलों का उत्पादन हो सकता है जो उस मौसम में बाजार में नहीं मिलती, और जो फसलें बाजार में नहीं उपलब्ध हो और वो फसलें तुम बाजार में ले जाओगे तो बताओ कितना मुनाफा होगा, यानी 40 पैसे का बैंगन 40 रुपये में मिलेगा।
1: अरे भैया ये तो मुनाफे वाली बात है, तो क्या मैं इसमें आपकी सहभागिता ले सकता हूँ?
2: क्यों नहीं?
0: लेकिन भैया जितना खर्चा हुआ है उतने के बराबर ही खर्चा देना पड़ेगा।
1: चलो ठीक है, मेरा भी एक हिस्सा जोड़ लो।
3: अरे ये हुई ना बात, तुम भी समय के साथ साथ चलने लगे हो, इसका मतलब आप थे बुद्धू बन गए महात्मा बुद्ध।
4: किसान भाइयों, स्वागत है आपका। तो पता चला ना आपको कि भाई निवेश तो एक बार बड़ा करना ही पड़ेगा और लाभ बार बार होने की पूरी संभावना है। तो धन्यवाद संगम भैया कि आपने हमारे किसान भाइयों को और खास तौर की कल्लू को ये बताया कि भाई खेती एक बार करो, लाभ बार बार कैसे कमाओ, यही एक मंत्र है और इसी को अपनाना चाहिए। और अब इस बात को भाई और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपने विशेषज्ञ के पास, और विशेषज्ञ हमें आज बताएंगे कि भाई कौन कौन सी वो विधियां हैं जिससे कि हम नई नई खेती अपना सकते हैं। और संगम भैया, पॉली हाउस के बारे में आपने जो जानकारी बतवाई है वो तो बड़ी लाभकारी है कल्लू के लिए और उन सभी किसान भाइयों के लिए। तो भाई क्यों ना मैं भी किसान भाइयों आपको लिए चलूं संगम भैया की तरह अपने विशेषज्ञ के पास, ताकि वो हमें बता सकें कि भाई पॉली हाउस किस तरीके से फायदेमंद है।

0: डॉक्टर सुरेश कुमार मौर्य है और मैं सब्जी विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पे काम कर रहा हूँ।
1: जी जी।
0: सर्वप्रथम तो है कि पॉली हाउस बड़े काम की चीज है और खास तौर पे जो है बेमौसमी सब्जी उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका अंग होता है कि इसमें आप 6 से लेकर 8 गुना तक ज्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ दूसरी भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। जो भी आप सब्जी लेते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप बिना सीजन के आप उगाते हैं तो हमारी जनसंख्या को देखते हुए भी है कि हम जो है सब्जी उत्पादन अपना जो है जितना हो रहा है उससे हम बढ़ा देते हैं तो हमें बहुत सारी जो है सब्जियां जो है बिना मौसम में खाने को लिए मिलती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। देखिए पॉली हाउस कई तरह के होते हैं और जैसे आपका लो कास्ट है, मीडियम कास्ट है, हाई कास्ट है, तो हमारे किसान भाई किस तरह का पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं कास्ट उस पर निर्भर करता है। इसमें जो हम पॉली सीट यूज करते हैं उसमें भी बहुत तरह की पॉली सीट आती है कि एंटी डस्ट है, एंटी सल्फर है, एंटी फॉग है, तो ये लागत तो इस पर निर्भर करता है कि हमारे किसान भाई किस चीज का बनाते हैं। आप बांस का भी बना सकते हो साधारण पॉली हाउस, आप तो चाहे आप अब तो जीआई पाइप्स आती हैं उसका भी आप पॉली हाउस बना सकते हो, किस तरह का बनाते हैं। ज्यादा करके किसान भाई जो हमारी हमारा प्रदेश है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हम लोग के लिए लाभकारी होता है। बनवाते समय इसमें एक ही बात का ध्यान रखते हैं कम से 60 से 70% इसमें वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बीमारियों वगैरह का प्रकोप बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बनवाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पॉली हाउस बिल्कुल आपका न हो जहां पे छाया आती हो या ऐसी जगह न हो जहां पे पता लगा बरसात के दिनों में पानी भर गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेंस वगैरह से थोड़ा घिरा हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जानवर उसके पास कम से कम जा सके। पानी का स्रोत उसके आसपास होना चाहिए और बाजार से भी नजदीक हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीजें हैं और एक महत्वपूर्ण है कि पॉली हाउस बना लेते हैं तो चूंकि हम ठंडी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते हैं किसान भाई पॉली हाउस अगर बना, ऐसा नहीं है कि जब भी जूई आता है और पॉली हाउस खोला और अंदर घुमाने के लिए चले गया, पॉली हाउस इसके लिए नहीं होता है। पॉली हाउस को कम से कम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बनाते समय एक और ध्यान रखिएगा कि दरवाजे जो हैं आपके बिल्कुल सामने की तरफ न खुले, थोड़ा सा घूम के आप दरवाजा बनाइए, इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट अंदर जाने जा नहीं पाते हैं, तो ये हमें काफी उससे लाभ रहता है। और जिन किसान भाइयों के जैसे पॉली हाउस बनवा चुके हैं 2-3 साल हो चुके हैं तो बरसात बीतने के बाद एक बार उसकी जो है पॉली सीट जो ऊपर होती है सर्फ से उसकी धुलाई जरूर कर दें क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम होता है कि बरसात के बाद पन्नी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी काई जैसी जमने लगती है, तो आप धुलाई कर दोगे तो उत्पादन जो है एक बार फिर से आपको दोबारा अच्छे से प्रकार से मिलने लगेगा। और एक पॉली हाउस बनाते हैं तो आप पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाएं, कई सारे पॉली हाउस आपके लगे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं बिना तकनीकी जानकारी लिए हुए न बनवाएं तो बेहतर रहता है। एक बार आप जानकारी जरूर लें क्योंकि आपकी उपयोगिता क्या है, कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, ये सब चीजों का जैसे उसमें मिस्ट सिस्टम लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, तो हम सारी चीजों की जानकारी देते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और कितना बड़ा पॉली हाउस आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कम से कम आपका होता है कि 100 वर्ग मीटर का तो होना ही चाहिए, तो 100 से लेकर 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस अच्छा माना जाता है। इन सब चीजों को बनाए और लगाने का होता है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा, तो सावधानी के लिए भी आपको जो दवाएं हैं और जो डोज है बाहर से थोड़ा अलग होता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो आप किसी वैज्ञानिक से या संस्था से जुड़े रहें। बस ये है कि नहीं कि आप सब्जी का जैसे खेती से लगातार आय बढ़ाने का ये है कि खेत को हम कभी खाली ना छोड़ा जाए और पहले से सोच के डाइवर्सिफिकेशन की एक बात होती है कि ज्यादा तरह की फसलों का चुनाव किया जाए। बहुत सारी जैसे बीच में छोटा छोटा जैसे आपका गैप आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोबिया की बात होती है कि आपका गेहूं कटेगा और उसमें आप लोबिया थोड़े समय में 60 दिन में लगा के ज्यादा से ज्यादा जो है धान कटने के बाद आप लगा के ले सकते हैं, गेहूं और उसके लगने के पहले जो है आप उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो आप थोड़े थोड़े समय में, जैसे मूली एक ऐसी सब्जी है आप इसको साल भर में 8 बार लगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि 2 फसल के बीच में जो है हमारा थोड़ा गैप हो रहा है 25 दिन 40 दिन, तो आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करिए, लगाइए और आमदनी दे दीजिए। बिल्कुल भी हमें जो अगर हम लगातार लगे रहें और सोच बनाए रखें खास तौर पे उन सब्जियों को भी जैसे लगता है कि साल भर आमदनी की बात है तो कुछ किसान भाइयों को पॉली हाउस वगैरह भी बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना मौसम में भी जो है सब्जी हम लगा के हम जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। और लगाने से सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाई जैसे है कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस सब्जी को लगाने जा रहे हो उसमें लागत कितनी आएगी और उसका बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है। तो जहां भी आप लगाना चाहो, ये नहीं कि हमने कह दिया कि कोई भी सब्जी आप साल भर उगाते रहिए, इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप सब्जी उत्पादन शुरू करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा बहुत कोई नई सब्जी आप जैसे एक जोटी का आप लेट्यूस लगाना चाहते हैं, सेल्ली लगाना चाहते हैं, इस तरह की सब्जियों की अगर खेती करना चाहते हैं तो एक बार बात जरूर कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जैसे हमारे दिल्ली है वहां आपको मूल्य बहुत ज्यादा उसका मिलेगा। तो इस तरह की चीजों में लगने से पहले एक बार बाजार को देख ले, वैज्ञानिक सलाह जरूर ले ले। और मुझे लगता है कि ऐसी सब्जी है जैसे टमाटर तो पूरे साल भर, और किसान भाई देख रहे हैं कि हर एक सब्जी पूरे साल भर मिल रही है, मिल कहां से रही, जब कोई किसान उगा रहा तभी तो मिल रही है आपको, तो दूसरा उगा सकता है हमारे देश के दूसरे भाग में उगा सकता है तो हम क्यों नहीं उगा सकते। तो पूरा है कि सब्जी से अगर व्यवसाय में लगा जाए तो हम पूरे साल भर जो है उसमें लगे रहेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हमें आधुनिकरण करना पड़ेगा कि हमें जो है पॉली हाउस है, मल्च है, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, कुछ नई चीजें जो आई है, नई प्रजातियां हैं, इनका हम समावेश करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि साल भर जो है हमारा जो परिवार, हम खुद भी अच्छी सब्जी खाएंगे, दूसरे को भी अच्छा खिलाएंगे। तो ये जैसा कि है कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो सब मिल के चले तो सभी अच्छा ही अच्छा।
1: तो किसान भाइयों एक बार फिर से स्वागत है आपका कंकरीट के जंगल में, और मैं विकास स्वागत करता हूँ 14वें अंक में, यानी आज है हमारा 14वां अंक। किसान भाइयों ध्यान से आप इस जानकारी को सुनिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम कंकरीट के जंगल की श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं और इस कार्यक्रम से आपको कई खेती के नए आयामों के बारे में अवश्य ही पता चला होगा। भूमि कितनी आवश्यक है, उसका रखरखाव कितना आवश्यक है, और भूमि हमारे भविष्य को किस प्रकार से संजो के रखती है, इन सभी बातों में हमने किया है गौर अभी तक। तो आइए आपको लिए चलता हूँ और बताता हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं, यानी छोटी पर मोटी बातें,
2: छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
1: किसान भाइयों आज के कार्यक्रम में आपसे बात करके स्पष्ट तौर पर पता चला कि किसान भाई डरते हैं अधिक लागत लगाने से। भाई ये एक बार का सौदा है, लगाना फायदेमंद ही साबित होगा, और यही बात तो संगम भैया ने भी बातों बातों में हमें बताई। बातों बातों में सारी बातों को समझ के विशेषज्ञ ने भी हमें बताया कि पॉली हाउस के क्या लाभ हो सकते हैं और किन लाभों को लेते हुए आप एक बार की गई मेहनत से कई वर्षों तक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये है हमारा आज का विषय जो कि है निवेश एक बार लाभ बारंबार।
2: छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
1: तो किसान भाइयों अब समय आ चला है कि आपने कितना दिया है कार्यक्रम में ध्यान, इसीलिए परखूं आपका ज्ञान।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना और इसमें जाना कि किस तरीके से ग्रीन हाउस के साथ हम खेती कर सकते हैं। ये हमारे किसान साथियों के लिए एक नई तकनीकी है, इस तरीके की तकनीकी अपना कर अपनी खेती में मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ के किसान साथियों को सख्त पानी की सकता रहती है, क्योंकि अगर फसल वो बोते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी उनको देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें किसान, एक विकल्प हमने उनको दिया है कि ग्रीन हाउस की खेती करना चाहिए और किस तरीके से उससे मुनाफा कमाना चाहिए। आप नर्सरी भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधे जो बिकने लायक रहते हैं, चाहे वो फूल के हो चाहे वो सब्जियों के हो, उनके हम नर्सरी लगाकर तैयार कर सकते हैं ग्रीन हाउस के माध्यम से। तो ऐसे हम तकनीकी का उपयोग कर अपनी आजीविका को हम बढ़ा सकते हैं, यही विकल्प विकल्प है, छोटे छोटे विकल्प है जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद आवश्यक रहते हैं। और आवश्यक के साथ साथ हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम कैसे करें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनसे जाकर संपर्क करना चाहिए, और केबीके आपके नजदीक है वहां पर जाकर वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहिए और इस तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहिए। कुछ तरीके से झाबुआ जिले में इस तकनीकी का हम इस्तेमाल करके अपनी फसल उत्पादन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी तकनीकी हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, और महत्वपूर्ण के साथ साथ हमारे किसान साथियों को अब सोचने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी कुटीर उद्योग चुड़की कड़कनाथ यहाँ पर प्रचलित मात्रा में किया जाता है, यानी लोग इसको एक आजीविका के तौर पर देखते हैं, तो वो कड़कनाथ भी एक विकल्प हो सकता है हमारे किसान साथियों के लिए। कड़कनाथ पालन कर सकते हैं, इसके लिए सरकार भी इसके लिए मदद करती है, और साथ साथ में नर्सरी का विकल्प भी है आपके पास। हम सब्जियां भी लगा सकते हैं, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो जायज की फसल भी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे विकल्प हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की इजाजत, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। अब हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, खासतौर पर उन पथरीली इलाकों में हम किस तरीके से अपनी फसलों को और फल को लगा सकते हैं। जैसे कि कपास पर हमने बातचीत की थी कि हमारे किसान साथी कपास की खेती चूंकि झाबुआ में होती भी है तो किस तरीके से वो लगा सकते, क्या सावधानी होती चाहिए, इस बात पर भी हमने बताया था। खरबूजा की अगर बात करें तो खरबूजा एक फल है, यह पकने पर हरे से पीले रंग हो जाते हैं, हालांकि कई रंगों में उपलब्ध है। मूल रूप से इसके फल लंबी लताओं में लगते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में खरबूजा एक महत्वपूर्ण फसल है। खरबूजे की खेती मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश के गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। हमारे देश में उत्तर पश्चिमी में खरबूजे की खेती व्यापक रूप से की जाती है। इसकी खेती नदियों के किनारे मुख्य रूप से होती है। खरबूजा एक स्वादिष्ट फल है जो गर्मियों में तरावट देता है और इसके बीजों का उपयोग मिठाई को सजाने के लिए किया जाता है, तो ये भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। तरबूज की बात करें, तरबूज तो होता ही है, तरबूज ग्रीष्म ऋतु का फल है। यह बाहर के से हरे रंग का होता है परंतु अंदर ये लाल रंग और पानी से भरपूर और मीठे होते हैं। इनकी फसल आमतौर पर गर्मी के मौसम में तैयार की जाती है। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो इन्हें गर्मी में खाना अच्छा माना जाता है क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार तरबूज रक्तचाप को संतुलित रखता है और कई बीमारियों को दूर भी करता है। हिंदी की उपभाषाओं में इसे मतीरा राजस्थान के कुछ भागों में कहा जाता है और हरवाना जो हरियाणा के कुछ भागों में इसको हदवाना के नाम से जाना जाता है। ककड़ी तो चूंकि आप जानते हैं कि ककड़ी भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। ककड़ी की उत्पत्ति भारत से हुई है। इसकी खेती रीति और बिल्कुल तुरई के समान होती है, केवल इसके बोने का समय में अंतर है। यदि पूर्वी जिलों में हो तो यहाँ पर शीत ऋतु अधिक कड़ी नहीं होती है तो अक्टूबर के मध्य का बीज बोए जा सकते हैं, नहीं तो जनवरी में बोना चाहिए। इसे स्थानों जहां पर सर्दी अधिक पड़ती है इसे फरवरी और मार्च के महीनों में लगाना चाहिए। इसकी फसल बलई दुमट भूमि में अच्छी पैदावार होती है। इस फसल की सिंचाई सप्ताह में दो बार करनी चाहिए। ककड़ी में सबसे अच्छी सुगंध गर्म शुष्क जलवायु में आती है और इसमें दो मुख्य जातियां होती हैं, एक में हल्के रंग हरे रंग का फल होते हैं और दूसरे में गहरे हरे रंग का फल देती हैं। इसमें पहली तो लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद के ग्राहकों की पसंद के अनुसार फलों की चुनाई तरुणावस्था और उनके उसके बाद की जाती है। इसकी उपज कई एकड़ों में की जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को बेहद जरूरी समझने की बातचीत है, क्योंकि मौसम भी इस तरीके का रहता है कि आप मौसम आधारित खेतियों को करिएगा, किस मौसम में क्या बोना चाहिए उस पर हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम का से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं साथियों। और चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: एम तड़प मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: दोस्तों, जिंदगी के रंग आपकी सेहत के संग के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के प्रोग्राम में जो कैंसर चिकित्सा विशेषज्ञ कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, उनका नाम है डॉक्टर सात्विक खड्डर। डॉक्टर सात्विक ने अपनी MBBS और MD जनरल मेडिसिन की पढ़ाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से पूरी की जून 2017 में। उसके बाद उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से अपनी मेडिकल ऑन्कोलॉजी में DM की उपाधि सन 2020 में प्राप्त की। उसके बाद डॉक्टर सात्विक अहमदाबाद SRJ CBCC इंदौर, HCG हॉस्पिटल इंदौर और अब अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर सात्विक ने कई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और कई इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वो ऑनरेबल स्पीकर रहे हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं डॉक्टर सात्विक खड्डर से और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सात्विक का। डॉक्टर सात्विक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहिए।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सात्विक है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपके रेडियो के माध्यम से लोगों के बीच में कैंसर से रिलेटेड बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको दूर करना चाहूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि कैंसर होने से घबराना नहीं है। इसके बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है और अगर कैंसर होता है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर कराएं जिससे कि हम अपनी लाइफ को, पेशेंट को एक नई लाइफ दे सकें, एक अच्छी लाइफ और लंबी लाइफ दे सकें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत जानकारी से भरा हुआ प्रोग्राम होने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को सुने। आपके ना सही किसी न किसी के तो ये काम आएगा ही आएगा। तो डॉक्टर सात्विक, ये कैंसर फैलता कैसे है, होता क्या है और ये फैलता कैसे है? अक्सर लोग यही कहते हैं कि जी साहब, ये बीमारी फैल गई, तो कैसे फैल गई ये?
1: तो सबसे पहले मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि कैंसर होता कैसे है। ये भी बहुत कॉमन एक लोग पूछते हैं कि कंफ्यूजन हो गया जी। यस, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हर सेकेंड हर मिनट करोड़ों सेल्स जो है वो खत्म हो रही हैं और उनकी जगह नई सेल्स ले रही हैं। ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी में और पूरी बॉडी की करोड़ों सेल्स में ये हर सेकेंड चल रहा है। अब इसी प्रोसेस में अगर कुछ डिफेक्ट आ जाए, मान लीजिए कोई खराब सेल है, अब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो डिवाइड होती जा रही है। जो हमारी सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं, बड़ी होती हैं, जैसे हमारी एज होती है, हम बड़े होते हैं, बुढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं, इसी तरह से सेल्स की भी एक लाइफ साइकिल होती है। अब इसी लाइफ साइकिल में कोई सेल जो है वो खराब हो गई है बट वो मर नहीं रही है किसी वजह से और बॉडी भी उसको क्लियर नहीं कर पा रही है। आमतौर पर हमारी बॉडी खराब सेल्स को क्लियर कर देती है बट अगर बॉडी उसको क्लियर नहीं कर पा रही है या रिपेयर नहीं कर पा रही है तो वो सेल है धीमे धीमे मल्टीप्लाई होती रहती है और वो जब अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई होती रहती है तो वही ट्यूमर का रूप ले लेती है या फिर कैंसर का रूप ले लेती है और वो फिर हमें बॉडी में एज अ कैंसर डिटेक्ट होती है। और यही कैंसर जब एक जगह से बहुत एक साइज या एक मात्रा तक एक जगह पे बढ़ जाता है फिर वो ब्लड के जरिए दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए फेफड़े का कैंसर है, वो एक साइज के होने के बाद वो वहां से ट्रेवल करके वो ब्रेन में चला जाता है या लीवर में या हड्डियों में चला जाता है। तो इस तरह से कैंसर बनता है और फैलता है।
0: बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, आपको अब बहुत साफ तौर पर समझ में आ गया होगा कि कैंसर होता क्या है और वो फैलता कैसे है। तो डॉक्टर सात्विक, आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहूंगा इसी सवाल से थोड़ा सा कनेक्टेड कि कितने तरह के कैंसर्स होते हैं, किस किस तरह के कैंसर्स होते हैं?
1: तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये भी हम एक बहुत कॉमनली देखते हैं कि लोगों को लगता है कि कैंसर एक बीमारी है, मतलब सब कोई सा भी कैंसर हुआ लोग उसको एक ही तरह का कैंसर समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, 200-250 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के कैंसर्स होते हैं और एक कैंसर भी कई प्रकार का होता है। बट अगर हम ब्रॉडली देखें तो कैंसर को दो विभागों में बांटा गया है। एक होता है ब्लड कैंसर, यानी कि जो ब्लड के जो सेल्स हैं उसका जो कैंसर है वो ब्लड कैंसर होता है, या लिक्विड कैंसर भी इसको बोलते हैं। और दूसरा होता है सॉलिड कैंसर, मतलब जो हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, या ब्रेन हो गया। तो
0: जी
1: ये जो ऑर्गन्स के जो कैंसर है इसको सॉलिड कैंसर्स कहते हैं। अब इनमें फिर फर्दर सब डिविजन्स होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर भी 100-200 टाइप का होता है, और फिर अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो हर ऑर्गन का अपना कैंसर होता है, और वो कैंसर भी बहुत तरीके का होता है। जैसे लंग कैंसर की मैं बात करूं, फेफड़ों का जो कैंसर है वो भी कम से कम 20-21 तरीके का वेराइटीज होती हैं। वहीं अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है, वो भी 4 से 5 तरीके का होता है। तो इसीलिए अगर हम बहुत डिटेल में अगर हम जाएं तो कैंसर 200-250 से भी ज्यादा अलग अलग वेराइटीज के होते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली अगेन दोबारा ये समझाया है कि कैंसर के प्रकार कितने तरह का के होते हैं, अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं, ये जानकारी जरूरी है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसा समझिए कि जुकाम भी तो कई तरीके के हो जाते हैं, उसी तरीके से कैंसर थोड़ी सी गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। हमें जानना जरूरी है कि कितने तरह के कैंसर होते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा सर, कैंसर के ज्यादातर नॉर्मल रूटीन कॉमन ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, क्या तरीके होते हैं कैंसर को ट्रीट करने के?
1: तो कैंसर को अगेन ट्रीटमेंट करने के मेन जो तरीके हैं वो 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं। एक होता है सर्जरी, जिसमें हम सर्जरी करके कैंसर की जो गांठ है
0: जी
1: उसको निकालते हैं शरीर से। दूसरा होता है कीमोथेरेपी, जिसमें हम कुछ दवाइयों की मदद से कैंसर की सेल्स को मारते हैं। और तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी, जिसमें हम इनविजिबल रेज होती हैं रेडिएशन की,
0: जी
1: जिसकी हेल्प से हम कैंसर की सेल्स को अगेन डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये 3 मेन तरीके हैं जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: जी भाई वाह, आसान है डॉक्टर साहब, आसान है दोस्तों, समझना भी और एक्सपीरियंस करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। डॉक्टर साहब ने 3 तरीके बताए, सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल दिया जाए, मेडिसिन दे के उन सेल्स को गला दिया जाए, या फिर रेडिएशन दे के उनको जला दिया जाए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन अगेन ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है, विशेषज्ञों का फील्ड है, तो हमें हर हालत में विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। तो डॉक्टर सात्विक, अक्सर कैंसर को लेकर बड़े गलत फहमियां हो जाती हैं, कॉमन मिथ्स होती हैं कि अगर कैंसर हो गया तो बस खत्म। सबसे ज्यादा मिथ यही है, अगर कोई एक कॉमन आदमी समझना चाहे, एक साधारण व्यक्ति समझना चाहे, तो इस तरह के कौन कौन से गलत फहमियां हैं कैंसर के बारे में डॉक्टर?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जो आम जनता में फैली हुई है। सबसे कॉमन जो मैं और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा जो मिथ है,
0: जी,
1: वो लोग समझते हैं कि बायोप्सी, जब बोलते हैं हम लोग कि बायोप्सी करनी पड़ेगी
0: जी,
1: तो लोग कहते हैं नहीं, बायोप्सी करने से तो कैंसर फैल जाता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि बायोप्सी करने से पहली बात तो कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता है, और दूसरी सबसे बात कि बायोप्सी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बल्कि ये पहला स्टेप है जिसकी मदद से हम कैंसर को डायग्नोज करते हैं। इसके बिना हम कैंसर डायग्नोज ही नहीं कर सकते, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं है, अगर ट्रेंड स्पेशलिस्ट से बायोप्सी कराते हैं, सही तरीके से कराते हैं, तो बायोप्सी से कोई भी कैंसर नहीं फैलता है। ये सिर्फ एक जांच है, जैसे सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ये जांचें होती हैं, इसी तरह से बायोप्सी भी एक तरह की जांच है, और इससे बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है कैंसर फैलने का, और ये सबसे जरूरी जांच है कैंसर की। तो सबसे कॉमन तो यही है, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते हैं ये इस डर से। दूसरा ये बहुत कॉमन मिथ है कि जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो पेशेंट्स कहते हैं सर कीमोथेरेपी से तो बॉडी जल जाती है
0: जी,
1: या बॉडी सूख जाती है, इस तरह के हम सुनने को मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कीमोथेरेपी जस्ट एक दवाई है, वो टैबलेट भी हो सकती है, वो कैप्सूल भी हो सकती है, वो इंजेक्शन भी हो सकते हैं, और जिस तरह से हम दूसरी दवाइयां देते हैं बस उसी तरीके से कीमो को भी दिया जाता है। बिल्कुल मैं मानूंगा कि ये थोड़ी स्ट्रांग दवाइयां होती हैं, बॉडी पे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट इस तरह के बिल्कुल भी नहीं होते कि बॉडी जल रही है या पेशेंट सूख रहा है या बिस्तर पे पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे बहुत एडवांसेस हो गए हैं ट्रीटमेंट में, बहुत सेफर थेरेपीज आ गई हैं, कीमोथेरेपीज हो गई, नई टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज जो आप लोग पेपर में भी पढ़ते होंगे, तो ये जो नए ट्रीटमेंट है बहुत सेफ है। इनफैक्ट हमारे मैक्सिमम पेशेंट, मतलब 90% से भी ज्यादा जो पेशेंट्स हैं हमारे, डे केयर में ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब उनको एडमिट भी नहीं होना पड़ता वार्ड में। वो सुबह आते हैं, कीमोथेरेपी 2-3 घंटे की या 1 घंटे की, जिसकी भी जितनी ड्यूरेशन की कीमोथेरेपी है वो लेते हैं और वापस घर चले जाते हैं। कोई ऑफिस करता है तो वो ऑफिस चला जाता है, कोई स्कूल टीचर है वो स्कूल चला जाता है पढ़ाने। तो इतना नॉर्मल ये प्रोसेस है कि पेशेंट्स अपने रूटीन डे टू डे काम भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी लेते हैं
0: जी।
1: तो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है
0: जी।
1: तीसरा एक बहुत कॉमन मिथ है
0: जी।
1: वो ये है कि स्टेज 4 कैंसर को लेके, कि स्टेज 4 कैंसर हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ, समय बहुत कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कैंसर में जो रिसर्च हो रही है और पिछले 20-25 सालों में जो रिसर्च सबसे ज्यादा तरीके से हो रही है, स्पेशली अगर मैं लास्ट 5-7 साल की बात करूं
0: जी,
1: तो सबसे ज्यादा दवाइयां स्टेज 4 कैंसर्स के लिए आई हैं
0: जी,
1: क्योंकि ये इसका बर्डन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा है। और स्टेज 4 कैंसर्स के पेशेंट्स आज के टाइम पे सालों साल जी रहे हैं। हमारे पास भी ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने बोल दिया कि आप घर ले जाइए, सेवा करिए, 6 महीने हैं, 3 महीने बचे हैं आपके पास, और वो आज तक भी सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो स्टेज किसी भी स्टेज में डायग्नोज हो, आप ट्रीटमेंट जरूर लें या एटलीस्ट एक बार कैंसर स्पेशलिस्ट से परामर्श जरूर लें, क्योंकि बहुत से कैंसर ट्रीटमेंट्स आज के टाइम पे अवेलेबल हैं और हो सकता है कि आपका वो पेशेंट भी उसके लिए एलिजिबल हो, और अगर वो ट्रीटमेंट लेता है तो हम उसकी लाइफ बढ़ा सकें, एक अच्छी उसको जिंदगी दे सकें।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। दरअसल आपने जो सबसे पहला कंफ्यूजन मिथ के बारे में बताया कि बायोप्सी लेने से लोगों को ये एक कंफ्यूजन है, एक गलतफहमी है कि उनका कैंसर फैल जाएगा, तो आपसे ही पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि बायोप्सी सुनते ही ना लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि कोई चीज हमारे शरीर में डाली जाएगी और एक टुकड़ा तोड़ के निकाला जाएगा बाहर, उसकी वजह से हमको तकलीफ हो जाएगी, हमारा घाव भरेगा नहीं। तो मुझे ये बताना कि क्या ये बायोप्सी या FNAC जिसको भी बोलते हैं, एक छोटा सा टर्म उसका, क्या ये बहुत पेनफुल होती है, दर्दनाक होती है या ऐसी खतरनाक होती है क्या, जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि साहब इससे बड़ी तकलीफ हो जाएगी?
1: बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है, ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है
0: जी।
1: तो जिस भी एरिया से हम बायोप्सी कर रहे हैं उसको पहले लोकल एनेस्थीसिया देके सुन किया जाता है उस एरिया को
0: जी,
1: और फिर एक निडल के माध्यम से वहां से एक टुकड़ा निकाला जाता है, या FNAC में थोड़ा सा हम पानी निकालते हैं उस जगह से
0: जी।
1: बट ये प्रोसीजर कम्प्लीटली पेनलेस होता है, उस जगह को हम एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो सुन्न हो जाए, ताकि पेशेंट को तकलीफ
0: पता ही ना चले।
1: अगर वो नहीं करेंगे, यस, अगर हम नहीं करेंगे, एनेस्थीसिया नहीं देंगे उस एरिया को, तो बहुत ज्यादा पेन होगा। एक सुई भी हमें चुभती है तो कितना पेन होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: ऐसा पेनफुल प्रोसीजर हम नहीं करना चाहेंगे, तो इसीलिए उसको लोकल एनेस्थीसिया देके उसको सुन्न किया जाता है और बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, समझिए इस बात को, शुरू शुरू में मुझे भी कई बार ऐसा लगता रहा कि FNAC या बायोप्सी बड़ी तकलीफ दे चीज होती है, उसमें अजीबोगरीब से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज डॉक्टर साहब बता रहे हैं जितना भी डेवलपमेंट हो चुका है इस फील्ड में, उसके तहत बड़ा ही आसान प्रोसीजर है। समझिए सिंपल सा एक इंजेक्शन लगना है जो कि हम नॉर्मल रूटीन किसी भी क्लिनिक में जाके लगवा लेते हैं, ठीक उसी तरीके का। और आप ख्याल कीजिए, ये चीज सबसे पहली है और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल सेफ हाथों में हैं, आप एक्सपर्ट्स के हाथों में हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। ये सारे डॉक्टर्स भी आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि उनका पर्पस है आपको बहुत खुशहाल जिंदगी देना। तो डरिए मत, आगे आइए और ट्रीटमेंट कराइए। डॉक्टर साहब बस यहीं एक और बड़ा जरूरी सवाल पूछना चाहूंगा। कई बार जैसे कि आप इंदौर में हैं, कई बार मैंने ये भी देखा है कि सी ग्रेड सिटी के, यानी कि छोटे शहरों के पेशेंट्स या बीच की साइज के पेशेंट्स, जैसे मान लीजिए हम इंदौर या भोपाल की ही बात कर लें, वहां के पेशेंट्स को ये भी कंफ्यूजन है कि साहब मुझे हो गया तो अब या तो मुझे अहमदाबाद जाना चाहिए या मुझे बॉम्बे चले जाना चाहिए। उन्हें शायद ये पता ही नहीं कि उन्हीं के शहर में बहुत बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद हैं, शायद बॉम्बे और अहमदाबाद जैसे उनके बराबर या शायद उनसे बेहतर। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, ये तो ऐसा है कि हर दूसरे दिन हमें ये सुनने को मिलता है। बहुत सारे हमारे ही जान पहचान के लोग भी ये सवाल जब हमसे करते हैं
0: जी,
1: तो बहुत अजीब लगता है हमें
0: जी,
1: कि सब कुछ सुविधा आपके शहर में उपलब्ध है। देखिए, जो भी ये सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज हैं, जैसे अगर हम कैंसर की ही बात कर रहे हैं आज, तो जितने भी लोग आपके शहर में इस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो खुद एपेक्स इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये ऐसी ब्रांचेज होती हैं जो कुछ ही कॉलेजेस में होती हैं।
0: बिल्कुल जी,
1: तो वहां से ही सब लोग ट्रेन होके वही लोग, कोई मुंबई में जाके सेटल है, कोई अहमदाबाद में सेटल है, तो कोई इंदौर में, तो कोई भोपाल में, कोई अपने होम टाउन में सेटल है। तो
0: जी,
1: जब सेम स्पेशलिस्ट अलग अलग जगहों पे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो ट्रीटमेंट अलग अलग करेंगे। ट्रीटमेंट तो वो

0: दे पाएंगे, क्योंकि वो तो इतनी भीड़ में कर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि टाटा मेमोरियल क्यों आफ्टर ऑल डॉक्टर्स को एमडी करा के पढ़ाकर उनके अपने शहरों में वापस भेजता है। क्यों क्यों नहीं वो सारे डॉक्टर्स को वहीं रख लेते अगर उनको अपनी ही ख्याति चाहिए तो? नहीं, उनका उद्देश्य है कि हमारे यहां से पढ़कर डॉक्टर्स अपने अपने शहरों में जाएं, अपने पेशेंट्स को उनके घर में ही ट्रीटमेंट दें, वही ट्रीटमेंट जो टाटा में मिल रहा है। तो इसमें मुझे भी कोई समझदारी समझ नहीं आती कि आप पूरा कुनबा उठा के बॉम्बे पहुंच जाएं, होटलों में पैसा खर्चा करें और फिर वही ट्रीटमेंट लें जो आपका डॉक्टर आपको आपके ही शहर में दे रहा है। प्लीज समझिए इस बात को, रुकिए, आपके शहर के डॉक्टर भी टाटा से ही हैं, वो भी टाटा ही हैं, ट्रीटमेंट लें उनसे, भरोसा रखें। आपने बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब, की अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं एक पेशेंट के तौर पर पूछना चाहूंगा कि फर्ज कीजिए किसी को भी हो जाता है ऐसा कुछ इशू, तो उसको उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं, उसको तो ऐसा लगता है कि मेरे को बस मृत्यु दंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है तो उसके दिमाग में ये आता है कि ये ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा, मैं कितना ठीक हो पाऊंगा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि सबसे पहला सवाल पेशेंट के दिमाग में आता है, मेरा ट्रीटमेंट कब तक चलेगा और मैं कितना ठीक हो जाऊंगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
1: यस, सो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है
0: जी।
1: सबसे पहली बात तो कौन सा कैंसर है और कौन से स्टेज का है, उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। अगर अर्ली स्टेज या जैसे कि स्टेज वन या स्टेज टू का कैंसर है तो हो सकता है कि वो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो जाए या सिर्फ कीमोथेरेपी से या रेडियोथेरेपी से, तो एक या दो महीने या तीन महीने का ट्रीटमेंट रहेगा। थोड़ा सा एडवांस्ड होगा तो 5 से 6 महीने का ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ कीमोथेरेपी साइकिल्स होती हैं या रेडिएशन के साथ होता है। और अगर स्टेज 4 ट्रीटमेंट होता है तब ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, कई केसेस में वो लगातार हमेशा कुछ ना कुछ दवाइयां या कीमो चलती रहती है। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है पहला, मतलब कौन सा कैंसर है, कौन सा स्टेज है, पेशेंट की भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट एक हम एवरेज अगर हम लें एवरेज ड्यूरेशन तो वो 3 से 6 महीने रहता है कैंसर का ट्रीटमेंट ज्यादातर कैंसर का।
0: जी जी जी जी, ये तो कोई बहुत बड़ा समय नहीं हुआ दोस्तों। आराम से बहुत मोहब्बत से आप अपने डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं। विश्वास कीजिए इस तरह की बीमारियों में जो भी डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, उनका इलाज कर रहे होते हैं, उनसे बहुत नजदीक होते हैं, वो एक फैमिली की तरह वो उनसे बात करते हैं बहुत प्यार से। आपको एक भी पैसे की घबराने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो फिर भी जस्ट इन केस कोई व्यक्ति कभी उसको कुछ ऐसा अजीबोगरीब सा महसूस करे तो वो ये कैसे पहचाने अपने आप में कि उसको शायद कैंसर की शुरुआत हो गई है? मतलब मेरा मतलब है शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, एक जनरल पब्लिक की जानकारी के लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी।
1: बिल्कुल, तो देखिए कोई भी सबसे पहली बात तो कैंसर का अपने आप में कोई सिम्टम नहीं होता है
0: जी।
1: ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है बॉडी में उसके हिसाब से सिम्टम्स होते हैं और यही एक वजह है कि कैंसर कई बार पहचानने में देरी हो जाती है क्योंकि वो दूसरी बीमारियों की तरह आता है
0: जी।
1: जैसे कि एग्जांपल दो, जैसे खांसी हो रही है किसी को, हम सबको खांसी होती है भाई कभी ना कभी, बट वो ठीक हो जाती है 3-4 दिन में 5 दिन में या हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी। बट अगर मान लीजिए वो खांसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हैं ठीक ही नहीं हो रही है
0: जी,
1: आपने दवाई भी ले ली, डॉक्टर को भी दिखा लिया, इन्फेक्शन वगैरह की दवाई ले ली, नहीं ठीक हो रही, तब जरूर सोचना है कि ये कैंसर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो होगा ही
0: जी,
1: बट चांसेस उसके ज्यादा है। तो कहने का मेरा मतलब है कोई भी तकलीफ, कोई भी लक्षण अगर ज्यादा समय तक रह रहा है और आपने इलाज करा लिया और तो भी ठीक नहीं हो रहा है, तब हमेशा एक संदेह कैंसर का होना चाहिए दिमाग में
0: जी।
1: तो जैसे कि खांसी में, जैसे खांसी की मैंने बात करी, या फिर खांसी में खून आना, ये भी एक बहुत कॉमन लक्षण है। अब ये लक्षण टीबी में भी हो सकते हैं
0: जी हाँ,
1: बट ये कैंसर में भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से वजन कम होना, मान लीजिए कोई है पेशेंट जिसको 3-4 महीने से लग रहा है कि यार मेरे कपड़े ढीले होते जा रहे हैं और ना कोई स्पेशल डाइट कर रहे हैं ना कुछ नया एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना तो वैसे ही खा रहे हैं जैसा खाते थे,

0: या हो सकता है भूख कम हो गई और वजन भी कम होता जा रहा है, बहुत ज्यादा कम हो गया,
1: जी
0: तो ये भी कैंसर का लक्षण है। या मान लीजिए पेट खराब है, लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, होता है, ठीक होता है, फिर खराब हो जाता है, 2-3 महीने से ऐसा ही चल रहा है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसी तरह से बार बार बुखार आता है, ठीक हो जाता है, बुखार आता है 2-3 हफ्ते से आ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, फिर थोड़े दिन कम हो जाता है, फिर आ जाता है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। कोई गले में गांठ आ गई है या छाती में गांठ आ गई है जो जा ही नहीं रही है, आपने इलाज करा लिया या कई बार कुछ दवाई ले ली तो भी ठीक नहीं हो रही है या बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं कि महीने भर पहले तो मान लीजिए मटर के दाने के जितनी थी, अब वो नींबू के साइज की हो गई है, तो इसका मतलब वो कैंसर हो सकती है। मुंह में कोई छाला है, हम सबको मुंह में छाले होते हैं,
1: जी
0: बट
1: जी
0: वो ठीक हो जाते हैं 4-5 दिन में, बट कोई छाला है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, और उसका साइज भी आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे बड़ा सा होता जा रहा है, तो ये कैंसर होने की संभावना है। तो कहने का मतलब है कोई भी सिम्टम अगर लंबे समय तक आपको हो रहा है और इलाज लेने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो वो कैंसर हो सकता है। तो जांच जरूर कराएं, और अगर आपको डाउट है तो कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले या फिर अपने जो भी फिजिशियन है जिनको दिखाते हैं आप, उनको आप सामने से बोलिए कि सर इसके कैंसर की भी एक टेस्ट कर लीजिए। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे इसी बात से मुझे एक बात याद आई, लोग ये भी घबराते हैं कि नहीं जांच कराएंगे, कैंसर आ गया तो हम जांच ही नहीं कराएंगे।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: जांच नहीं कराने से कैंसर तो नहीं शांति से बैठेगा कि
1: बिल्कुल
0: मैं तो शांति से बैठ जाता हूँ, ये जांच नहीं करा रहे हैं। मैं तो ये पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप जांच कराएंगे तो आप उसको इस तरह से लीजिए, अगर वो कैंसर रहा भी तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा, हो सकता है स्टेज 0 या स्टेज 1 में पकड़ में आ जाएगा
1: जी,
0: और आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो घबराना नहीं है, जांच से डाउट क्लियर करने के लिए करा लीजिए। और कई पेशेंट्स हमारे पास आते भी हैं ऐसे, और हम जांच करते हैं और कई बार नहीं निकलता है कैंसर, तो एटलीस्ट जो मन का जो वहम है वो तो आप क्लियर कर सकते हैं कि भाई ये कैंसर नहीं है। और अगर निकल भी जाता है मान लीजिए तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और हम अर्ली स्टेज पे उसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो ऑफ कोर्स दोस्तों, ये थोड़ी सी गंभीर बात है जिसको हमको गंभीरता से ही लेना चाहिए, मजाक में उसको लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक इस बात को थोड़ा सा हल्का करने के लिए डॉक्टर साहब, दरअसल मेरे एक मित्र हैं, हमारी नॉर्मल रूटीन साइकोलॉजी ही ऐसी है कि हम टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम स्वस्थ हैं, हमको ऐसा लगता है। और एक और साइकोलॉजी है कि अगर हमने टेस्ट करा लिए और फिर हमें कुछ नहीं निकला तो हमको लगता है हमारे पैसे खराब हो गए, लो साहब टेस्ट कराया कुछ निकला ही नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरा मानना यह है, वो मेरे मित्र मेरे से पूछते हैं क्यों भाई 3,500 रुपए खराब कराए, जब मैं पूरा CBC और जो भी पूरा चेकअप हर तीसरे महीने में मैं कराता हूं, तो वो कहते हैं और भाई पैसे खराब कर आए। तो मैं कहता हूं भाई साहब उन पैसों से मैं पीस ऑफ माइंड खरीद के लाया हूं, क्योंकि वो 3,500 रुपए या 1,500 रुपए या जितने भी मैंने दिए और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन आई तो वो मेरे लिए तो एक तरीके का आशीर्वाद ही है, तो वो इन्वेस्ट किया है मैंने मेरी हेल्थ में, बेकार नहीं किया है दोस्तों, प्लीज इस बात को समझिए। तो टेस्ट जरूर करा लीजिए। देखिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हमारे डॉक्टर साहब भी प्रार्थना करते हैं कि आपको कुछ ना हो, लेकिन अगर हो तो पकड़ में, भला CBC कराई और कुछ भी ल्यूकोसाइट या कोई भी अगर पैरामीटर ऊपर नीचे मिला तो हम फौरन ट्रीटमेंट लेने तो चले जाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हम डॉक्टर सात्विक के पास चले जाएंगे, आसान काम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सात्विक। तो जैसे आपने एक बार पहले भी मुझे बताया अपनी बातचीत में कि कई दवाइयां हैं जिनके बारे में जो कीमोथेरेपी के तौर पर या मेडिसिन के तौर पर यूज की जाती हैं, लोगों के बीच में एक मिथ ये भी है, आपने वैसे बोल दिया था कि वो जहरीली होती है, बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, आदमी सूख जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन आपने साथ साथ ये भी कहा कि आज के डेवलपमेंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है जो कि बहुत बहुत सेफ है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा जो मेडिसिन यूज होती हैं ट्रीटमेंट के लिए उनके बारे में और बताएं कि वो कितना साइड इफेक्ट्स या तकलीफ से मुक्त हैं और क्या वो महंगी हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा पहले कीमोथेरेपी नाम से जो फेमस है कि पहले होता था कि कीमो थे दवाई मतलब कैंसर की दवाई मतलब कीमोथेरेपी
1: जी,
0: बट ऐसा नहीं है. अब हम उसको उसके लिए टर्म यूज करते हैं सिस्टमिक थेरेपी.
1: सिस्टमिक थेरेपी
0: उसके अंदर अलग अलग थेरेपीज आती हैं, जैसे कीमोथेरेपी हो गई, टारगेटेड थेरेपी हो गई, हार्मोन थेरेपीज हो गई, या फिर इम्यूनोथेरेपी हो गई. तो ये सब दवाइयां हैं और इनको हम एक टर्म यूज करें तो सिस्टमिक थेरेपी कहते हैं
1: जी.
0: अब एक एक करके हम बात करें तो कीमोथेरेपी जो सबसे कॉमन लोगों को पता है, ये दवाइयां होती हैं जो कैंसर सेल्स को मारती हैं. इसी को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम है कि जहरीली होती है, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं जहरीली होती है. ऐसा नहीं है. मैं मानता हूं कि ये बाकी दवाइयां जो हम रूटीन में यूज करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स या दूसरी बीमारियों के लिए हम दवाइयां यूज करते हैं, उससे ये थोड़ी सी स्ट्रांग होती है. स्ट्रांग का मतलब कि इनका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, क्योंकि कैंसर सेल्स भी एग्रेसिव होती हैं, तो उनके लिए दवाइयां भी हमें एग्रेसिव चाहिए. और इस वजह से कभी कभी हमारी जो नॉर्मल बॉडी की सेल्स है उस पर भी इफेक्ट आता है, बट वो सारे साइड इफेक्ट टेम्परेरी होते हैं. दूसरी चीज, मैक्सिमम केसेस में 80-90% केसेस में माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं. माइल्ड मतलब ऐसे कि पेशेंट को बहुत इजीली टॉलरेबल होते हैं, या कई बार नहीं भी होते हैं साइड इफेक्ट,
1: बड़े हल्के फुल्के
0: 10%. हाँ, बहुत हल्के फुल्के. और उसके लिए भी हम एनीवेज दवाइयां ऑलरेडी ही देते हैं. 10% केसेस में, या मैं तो कहूंगा लेस देन 10% केसेस में ही सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. मतलब 10 में से शायद एक, या 15 या 20 में से एक पेशेंट को कभी ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं. अब साइड इफेक्ट्स में की भी बात करें तो सबसे कॉमन जो लोगों को लगता है कि उल्टियां बहुत होती हैं कीमोथेरेपी लेंगे. मैं बताना चाहूंगा कि आजकल जो हम दवाइयां यूज करते हैं वॉमिटिंग रोकने के लिए, जो हम कीमो देने से पहले पेशेंट्स को देते हैं, 90% से ज्यादा पेशेंट्स को उल्टी तो छोड़िए, मिचली या नौजिया जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं होता है.
1: वाह.
0: मतलब पेशेंट्स को कुछ भी नहीं होता है.
1: जी जी.
0: बहुत हार्डली 5-10% पेशेंट्स बोलेंगे कि हाँ मुझे नौजिया ऐसा
1: मतली सा हो रहा है,
0: लग रहा है, लेकिन उल्टी नहीं हो रही है. शायद ही कभी 200-300 पेशेंट में से एक आध को उल्टी की कंप्लेंट होती है. और ऐसा होता भी है तो हम फिर हमारे पास और भी दवाइयां रहती हैं, तो ना के बराबर साइड इफेक्ट होते हैं. रही बात जलने की या सूख जाने की, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है. बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब मेरे से कोई पूछता है, कोई पेशेंट या उनके साथ वाले, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप हमारे डे केयर में जाइए, वहां पेशेंट्स हैं, आप एक बार बस राउंड लेके आ जाइए और आप देख के बता दीजिए कि क्या देख के आपको किसी को लग रहा है कि उनको कीमो चल रही होगी. बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हट्टे गट्टे रहते हैं पेशेंट्स, और ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है कि इस तरह से हो जाएगा, मतलब जल जाएगी बॉडी, क्योंकि वो नॉर्मल जो हमारी बॉटल्स होती है, नॉर्मल सलाइन की, डेक्सट्रोज की जो बॉटल्स होती है, उसी में हम इंजेक्शन डाल के देते हैं. तो ऐसा नहीं है कि नसें जल जाएंगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है. और तीसरी बात रही कॉस्ट की, तो जैसे जो नई थेरेपीज आ रही हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज की हम बात करें, तो हाँ मैं मानता हूँ कि इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है. उसके भी अपने रीजंस हैं, क्योंकि ये दवाइयां जब नई आती हैं तो पेटेंटेड रहती हैं, पूरी दुनिया में एक ही कंपनी उनको बना रही होती है जब तक कि उनका पेटेंट एक्सपायर नहीं हो जाता
1: जी.
0: तो तब तक वो थोड़ी सी कॉस्टली रहती हैं. बट अगेन उनमें भी बहुत, क्योंकि कंपनीज भी इस बात को जानती हैं कि हमारी दवाइयां बहुत महंगी है, और इंडिया जैसे मार्केट में जहां लोगों की इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो बहुत से पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स कंपनीज जो मल्टीनेशनल
1: चलाती हैं,
0: जो यूएस या जर्मनी की जो कंपनी है, वो पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम चलाती हैं, जिसमें आपने एक साइकिल खरीदी तो एक साइकिल कंपनी कंप्लीटली फ्री देती है, या आपने 3-4 साइकिल या 5 साइकिल खरीद ली, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट कंपनी आपका पूरा फ्री कर देती है. तो इस तरह से काफी हद तक कॉस्ट को हम कंट्रोल कर पाते हैं, पेशेंट्स को हम अफोर्डेबल कर पाते हैं इन थेरेपीज को. साथ ही साथ मैं इसी माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि मेडिक्लेम इसलिए बहुत जरूरी है. ये हमने देखा है कि इंडियन मेंटेलिटी अलग, जैसा आप बता रहे थे
1: जी, जी.
0: कि टेस्ट करा लिए, नॉर्मल आएगा, पैसे खराब हो गए,
1: पैसे खराब हो गए.
0: मेंटेलिटी है कि मेडिक्लेम मैं क्यों लूं, मैं तो बीमारी नहीं पड़ूंगा.
1: हाँ.
0: मान लीजिए मेडिक्लेम ले लिया, बीमार नहीं पड़ा, पैसे खराब हो गए
1: जी.
0: तो ये भी लोग पूछते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई साहब, आप अपनी गाड़ी का भी तो हर साल
1: करेक्ट
0: कराते हैं.
1: वेरी करेक्ट.
0: वो तो आपकी खराब नहीं हो रही है, लेकिन आप कराते हैं, तो उसी तरह आप अपनी बॉडी का इंश्योरेंस क्यों नहीं करा रहे?
1: बिल्कुल सही.
0: अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस को आप खर्चा मत, मतलब उसको
1: इन्वेस्ट
0: सोचते हैं कि रिटर्न, हाँ मतलब रिटर्न नहीं मिल रहा है इसका, तो कुछ तो ऐसा नहीं है. आप मान के चलिए कि हर साल के आपकी बॉडी की मेंटेनेंस का आप खर्चा दे रहे हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस हमें बहुत जरूरी है, हमें करा के रखना चाहिए. और इसको एक मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इंश्योरेंस कराया और हम बीमार नहीं पड़े तो वो पैसे खराब हो गए. ये अपने बॉडी का एक खर्चा है, साल का एक बार आप मान के चलिए अपने हेल्थ के लिए आप दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है और हमें भी बहुत बुरा लगता है जब पैसे के कारण किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता,
1: जी जी जी,
0: पैसे की कमी के कारण। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि वो पेशेंट लेना तो चाहता है वो ट्रीटमेंट, बट उसकी पहुंच से बाहर है, और उस वजह से अगर उस पेशेंट की लाइफ कम हो रही है या खराब हो रही है तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जितना आपका पॉसिबल है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से जरूर इंश्योरेंस ले। सरकार भी मदद करती है, तो आयुष्मान भारत योजना भी है, तो वो भी अगर कोई एलिजिबल है तो उसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों को हम ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे गरीब पेशेंट्स जो शायद कभी ट्रीटमेंट वो नहीं ले पाते आउट ऑफ पॉकेट, उनको भी हम आज के टाइम पे ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। एक बेसिक ट्रीटमेंट आयुष्मान में कवर हो जाता है ज्यादातर लोगों का।
1: जी जी जी,
0: तो इस तरह से हम फाइनेंशियली हेल्प कर पाते हैं इन तरीकों से कैंसर के ट्रीटमेंट में पेशेंट्स।
1: बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, बहुत बढ़िया जानकारी दी। मैं इस बात से तो बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूं कि अवेयरनेस की कमी जहां तक कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में है, साथ ही साथ ये भी जबरदस्त अवेयरनेस की कमी है कि मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं करा के रखते लोग। तमाम तमाम बार डॉक्टर साहब मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है, कई बार कैब ड्राइवर्स हुए या कई बार नॉर्मल रूटीन लोगों से भी बातचीत हुई है, तो उनको मेडिकल इंश्योरेंस टर्म ही नहीं पता होता। आज के जमाने में 24 में से 18 घंटे वो फोन के ऊपर रील चला लेते हैं लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस नहीं पता, बड़ा ही आश्चर्य होता है, झटका लगता है। और जबकि उनकी उम्र पर मेडिकल इंश्योरेंस साल भर का 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए के प्रीमियम पर आराम से मिलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोग मेडिकल इंश्योरेंस से क्यों दूर भागते हैं। फिर जब कुछ इस तरीके की बीमारी आ जाती है तो फिर फाइनेंशियली परेशान होते हैं, पूरा परिवार बिखर जाता है, सारे मकान बिक जाते हैं, क्या मतलब हुआ। तमाम बार सरकार कोशिश कर रही है अपनी तरफ से बताने की, जैसे आपने बताया आयुष्मान भारत। दोस्तों इस माध्यम के तरह से, इस माध्यम के माध्यम से मैं आप सब लोगों को फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में कम से कम किसी से बात तो कीजिए, पता तो कीजिए होता क्या है। आज की डेट में प्राइवेट कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को उनके पूरे परिवार के साथ मेडिकल इंश्योरेंस से कवर करने की कोशिश कर रही हैं। आप जरा सा कदम आगे बढ़ाइए, 100, 200, 300 रुपए महीने के खर्चा कोई बड़ा खर्चा नहीं है दोस्तों, लेकिन उससे डॉक्टर सात्विक को और उनके जैसे तमाम तमाम विशेषज्ञों को मदद मिलती है कि आपका ट्रीटमेंट कर सके। डॉक्टर सात्विक ने साफ साफ बताया कि उनको बहुत दुख होता है कि जब वो देखते हैं कि ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, अपनी जिंदगी खुशहाल जी सकता है, लेकिन क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर पा रहा, खर्चा उठा नहीं पा रहा, तो उनको बहुत दुख होता है। प्लीज ऐसा मत करिए। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए बस एक और चीज पूछना चाहूंगा, अगर और अधिक जानकारी चाहिए हो, आपसे संपर्क करना हो, आपसे मुलाकात करनी हो, तो कैसे आपके संपर्क में आए, प्लीज बताइए।
0: बिल्कुल, तो मैं इंदौर में अच्छी अपोलो हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करता हूँ
1: जी,
0: और दिन भर में वहीं पे ही रहता हूँ
1: जी,
0: 6 मंडे टू सैटरडे, और साथ ही मैं शाम को मैं अपने क्लिनिक पे भी थोड़ा टाइम देता हूँ पेशेंट्स को
1: जी,
0: विजयनगर में ही, तो मेरे को वहाँ पे भी मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, और अपने कुछ भी डाउट्स हैं कैंसर रिलेटेड तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
1: कोई फोन नंबर होगा डॉक्टर साहब जहाँ पर आपसे फोन करके अपॉइंटमेंट लिया जा सके, या आपके सेक्रेटरी से या असिस्टेंट से?
0: श्योर, तो हमारे एक तो अपोलो के वेबसाइट के थ्रू या उनके डायरेक्ट नंबर से भी रहता है, और हमारे क्लिनिक के पर्सनल सेक्रेटरी का भी नंबर रहता है
1: जी,
0: जो जो लोग मतलब आजकल लोग नेट तो चलाते ही हैं, तो गूगल पे आप नाम भी डालेंगे तो भी प्रोफाइल पे आ जाता है, उसके थ्रू भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया, तो दोस्तों इस जानकारी को बहुत संभाल के अपने पास रखिए कि गूगल कीजिए डॉक्टर सात्विक खड्डर और आपको सारी जानकारी उनकी मिल जाएगी। अपोलो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब बैठते हैं तो वहां पर भी उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिला जा सकता है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा और बेहतर उनसे डिस्कशन करना है, या आप उनसे पर्सनली मिलकर उनके क्लिनिक पर कंफर्टेबल है, आपको लगता है ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो वहां जाइए, वो भी आपको गूगल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके असिस्टेंट से फोन करके बात करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत मजा आया आपसे, बहुत सारी जानकारियां मिली, मुझे पूरा विश्वास है लोगों को बड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर छोटी मोटी कुछ मिथ्स, कुछ कंफ्यूजन, कुछ समस्याएं रह गई होंगी तो वो आगे आके आपसे बात कर सकते हैं। मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर सात्विक से संपर्क कीजिए। डॉक्टर सात्विक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ही एक्सपर्ट हैं जो आपके ही शहर में हैं। इस प्रोग्राम के जरिए मैं चाहूंगा कि पूरे एमपी में इस बात की खबर हो कि पूरा वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, वही इलाज की इफिकेसी आपके शहर में भी है जो आपको बॉम्बे जाके मिलेगी। बेहतर होगा आप डॉक्टर सात्विक से संपर्क में आए जिससे कि आपको आराम से आपका ट्रीटमेंट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सात्विक। मैं बस चलते चलते गुजारिश करूंगा आपसे कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कोई मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
0: तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि कैंसर से हमें घबराना नहीं है, इसका डट के सामना करना है और इसको हराया जा सकता है बहुत आसानी से
1: जी।
0: बस थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है और थोड़ा सा भरोसा रखने की जरूरत है। और ये भी याद रहे, अगर आपके जान पहचान में किसी को कैंसर हुआ है तो कैंसर कोई सेंटेंस नहीं है या डेथ सेंटेंस नहीं है, वो जस्ट एक बीमारी है जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं, और उसको एक बीमारी की तरह लीजिए, समय रहते इलाज कराइए ताकि पेशेंट्स को हमें अच्छी जिंदगी और एक लंबी जिंदगी दे सके।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डॉक्टर सात्विक, आपसे बात करके बहुत भरोसा आया, बहुत हिम्मत बंधी है मेरी भी और मेरे सुनने वालों की भी। थैंक यू सो मच।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन

0: तरीकी। इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है। गोविंद तो इसमें हवा भरवा ले।
0: अच्छा भैया,

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था।

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: दोस्तों, आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम। गजल के शाम के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो शायर हमारे साथ हैं, उनका नाम है शब्बीर हसन खान साहब, जिनको शब्बीर हसन शब्बीर साहब भी कहा जाता है। शब्बीर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया गुल साहब।
0: तो प्रोग्राम को शुरू करते हुए बस एक बहुत ही मासूम सा छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ रहते हैं, उस जगह के बारे में कुछ रोचक बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग बताइए।
1: मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: और एजी ऑफिस में ऑडिट अफसर था जो रिटायर कर गया
0: जी। बहुत बढ़िया।
1: चार मजमू कलाम मेरा आ चुके हैं, बिहार उर्दू एकेडमी और बंगाल उर्दू एकेडमी से उस पर अवार्ड मिल चुका है।
0: अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: और मेरी एक नज्म जो है सिक्स क्लास के कोर्स में, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कोर्स में, वो दो कम से कम 1988 से 2000 तक पढ़ाई गई है।
0: बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब साहब।
1: और ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली की जानिब से मुझे फलोगे उर्दू अवार्ड मिला है
0: जी। बहुत खूब।
1: और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये ऑफिस से हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जानने हमारे सुनने वालों को भी आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब प्रोग्राम को शुरुआत करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमें सुनाएं।
1: शुक्रिया शुक्रिया बोल साहब। मैं गजल आप तमाम लोगों के समावतों के हवाले कर रहा हूँ
0: जी।
1: मतला अर्ज किया है, खुदी का अपनी हमेशा सवाल जहन में है, खुदी का अपनी हमेशा सवाल जहन में है, अना को ठेस न पहुंचे ख्याल जहन में है।
0: बहुत
1: खुदी का अपनी, शुक्रिया शुक्रिया। खुदी का अपनी हमेशा सवाल जहन में है, अना को ठेस न पहुंचे ख्याल जहन में है। और ये शेर तवज्जो जाऊंगा कि नशेब है कहीं अच्छा फराज बेमाना, नशेब है कहीं अच्छा फराज बेमाना, कदीम दौर का सारा जवाल जहन में है।
0: बहुत
1: कदीम दौर का सारा जवाल जहन में है। और शेर किया कि कहीं है जामो सुबह की बहुत फरावानी, कहीं है जामो सुबह की बहुत फरावानी, कहीं तो तृष्णा लबी बेमिसाल जहन में है। कहीं है जामो सुबह की बहुत फरावानी, कहीं तो तृष्णा लबी बेमिसाल जहन में है। और ये किसने आज मेरी जिंदगी बदल डाली, ये किसने आज मेरी जिंदगी बदल डाली, किसी की राह गुजर का जमाल जहन में है, किसी की राह गुजर का जमाल जहन में है। और गजल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जा चाहूंगा कि हर एक शख्स के चेहरे से ये लगा मुझको, हर एक शख्स के चेहरे से ये लगा मुझको, मेरी तरह वही रंजो मलाल जहन में है। हर एक शख्स के चेहरे से ये लगा मुझको, मेरी तरह वही रंजो मलाल जहन में है। और मख्तार किया है कि तनाजुली की ये रफ्तार है तेज ऐ शब्बीर, तनाजुली की ये रफ्तार है तेज ऐ शब्बीर, फसाना अब है जो जाहो जलाल जहन में है, फसाना अब है जो जाहो जलाल जहन में है, खुदी का अपनी हमेशा सवाल जहन में है, अना को ठेस न पहुंचे ख्याल जहन में है। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब साहब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया साहब, बहुत खूब।
1: शुक्रिया नवाजिश।
0: बड़ी ही संजीदा और बहुत ही प्यार से सुनाई गई गजल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो आइए दोस्तों सुनते हैं जगजीत सिंह साहब की गाई हुई ये बेहतरीन बेहतरीन गजल शब्बीर सर की फरमाइश पर।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल। शबीर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बचपन में तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था
0: जी। क्यों?
1: और ताकि लोगों की सेवा की जा सके
0: जी।
1: और एक अच्छा पेशा है डॉक्टर का पेशा
0: जी।
1: लेकिन लेकिन कुछ हालात तो ऐसे ऐसे ऐसे होते गए कि एडमिशन लेते लेते मैं रह गया। और उसके बाद फिर वो टर्न ऐसा आया कि मैं एजी ऑफिस में ऑडिट अफसर मैंने ज्वाइन कर लिया मैंने
0: जी। बिल्कुल ठीक सर, कोई बात नहीं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बचपन में हम किसी को देखते हैं, किसी से प्रभावित होते हैं और वो बनना चाहते हैं, लेकिन फिर हमें जिंदगी कहीं और ले जाती है और हम वहां भी भरपूर सफल होते हैं। हमारे मेरे इस सवाल को पूछने का बस मकसद यही होता है कि हम अपने बचपन में जाकर अपनी पुरानी यादों को एक बार फिर से मिलें, उनसे मोहब्बत करें, उनको याद करें। बहुत खूब साहब। तो शबीर साहब, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि
1: जी
0: अपनी एक गजल हमें और सुनाएं।
1: एक खूबसूरत शेर मेरा सुनिए पहले।
0: इरशाद।
1: जिंदगी में हर तरफ है कितनी उलझन देखिए
0: जी।
1: जिंदगी में हर तरफ है कितनी उलझन देखिए, क्या सुकून है जिंदगी था अपना बचपन देखिए
0: जी।
1: जिंदगी में हर तरफ है कितनी उलझन देखिए, क्या सुकून है जिंदगी था अपना बचपन देखिए। ये मशहूर शेर है मेरा जो बहुत पसंद किया गया है
0: जी। इरशाद जी।
1: और एक शेर और है कि मेरे एहसास की झीलों में कोई आता है, मेरे एहसास की झीलों में कोई आता है, कंकरी मार के नहरों पे चला जाता।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: मेरे शुक्रिया शुक्रिया नवाज़िश। मेरे एहसास की झीलों में कोई आता है, कंकरी मार के लहरों पे चला जाता है। अब गजल मुकम्मल गजल समाप्त फरमा लीजिए
0: जी।
1: मतलब अर्ज किया है
0: इरशाद
1: कि मैं अपने गम का उसे अब हिसाब क्या देता
0: जी।
1: मैं अपने गम का उसे अब हिसाब क्या देता, सवाल उसका अजब था जवाब क्या देता। मैं अपने गम का उसे अब हिसाब क्या देता, सवाल उसका अजब था जवाब क्या देता। और है दिल तो सादा वरक रोशनाई है आंसू, है दिल तो सादा वरक रोशनाई है आंसू, आया है गम उसे गम की किताब क्या देता।
0: क्या बात
1: आया है गम। शुक्रिया शुक्रिया नवाजी। आया है गम उसे गम की किताब देता क्या देता। और तमाम उम्र रहा, ये शेर बहुत तवज्जो चाहूंगा कि तमाम उम्र रहा उसकी दीद से महरूम, तमाम उम्र रहा उसकी दीद से महरूम, अब इससे बढ़ के मुझे वो अजाब क्या देता। तमाम उम्र रहा उसकी दीद से महरूम, अब इससे बढ़ के मुझे वो अजाब क्या देता। और शेर किया है कि जहां भी देखिए गम ही का साज बजता है
0: जी,
1: जहां भी देखिए गम ही का साज बजता है, तो मुझको नगमा खुशी का रबाब क्या देता।
0: क्या बात।
1: जहां भी देखिए गम ही का साज, शुक्रिया नवाजिश। जहां भी देखिए गम ही का साज बजता है, तो मुझको नगमा खुशी का रबाब क्या देता। और शेर किया कि दिले नहीफ को ताकत मुकाबले की कहां, दिले नहीफ को ताकत मुकाबले की कहां, जवाब मौज सितम का अब आप क्या देता।
0: क्या बात।
1: दिले नहीफ, शुक्रिया नवाजिश। दिले नहीफ को ताकत मुकाबले की कहां, जवाब मौज सितम का अब आप क्या देता। और ये शेर है कि पैरहन है तेरा कागजी बेसाथी क्या, ये पैरहन है तेरा कागजी बेसाथी क्या, तू अपने जिस्म से बुए गुलाब क्या देता।
0: क्या बात।
1: ये पैर, शुक्रिया नवाजिश। ये पैरहन है तेरा कागजी बेसाथी क्या, तू अपने जिस्म से बुए गुलाब क्या देता। और आखिरी शेर है गजल का कि तड़प तड़प के गुजारी है हिजर की रातें, तड़प तड़प के गुजारी हैं हिजर की रातें, वो इससे बढ़ के मुझे इस्तराब क्या देता।
0: वाह,
1: तड़प तड़प के, शुक्रिया नवाजिश गोयल साहब, तड़प तड़प के गुजारी हैं हिजर की रातें, वो इससे बढ़ के मुझे इस्तराब क्या देता। और मख्तास किया है कि मेरी निगाह हकीकत शनास है शब्बीर, मेरी निगाह हकीकत शनास है शब्बीर, फरेब आंखों को मेरी शराब क्या देता। मेरी निगाह, शुक्रिया नवाजिश, मेरी निगाह हकीकत शनास है शब्बीर, फरेब आंखों को मेरी शराब क्या देता, मैं अपने गम का उसे अब हिसाब क्या देता, सवाल इसका अजब था जवाब क्या देता। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया गजल साहब, बहुत ही संजीदा, बहुत ही ढंग से कही हुई, अल्फाजों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए मजा आ गया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश।
0: शब्बीर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बस एक और छोटा सा ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में बताइए।
1: बचपन की याद एक बहुत खूबसूरत याद है
0: जी,
1: कि मैं रांची बचपन में किसी के साथ जा रहा था सिस्टर को लाने के लिए, और वो आदमी रास्ते में वो बस से छूट गए और मैं अकेला रांची चला गया।
0: अच्छा,
1: और उसके बाद मेरे फादर ने ये कहा था कि कचहरी के पास उतर जाओगे, वहां से रिक्शा पकड़ करके चर्च रोड का होके वो चला जाएगा, ये मुझे याद। उसके बाद हम उतर गए वहां कचहरी के पास और रिक्शे वाले को कहा हमने कि भाई चर्च रोड चलना है, बोला चलिए। तो हम सोचा कि ऐसा है नहीं कि आदमी ना समझे, ऐसे कहा कि भाई कितना लोगे, तो मैंने 5 या 10 रुपया बोला, नहीं है हम तो रोज इतने में जाते हैं, ताकि वो समझे कि गया ये पुराने आदमी है।
0: जी जी जी,
1: अच्छा ठीक है चलिए। मैं चर्च रोड जब पहुंचा तो आखिर में रिक्शे वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है बाबू, हम कहा को रोकिए सामने वाले दुकान से पूछिए कि मेरे छोटे दादा का मकान जो है मुनीर खान का मकान कौन है। ये बहुत इत्तफाक का ही है कि मैं उन्हीं के घर के पास ये पूछ रहा था।
0: वाह क्या
1: और
0: बात,
1: और लोगों ने देखिए देखिए वही तो घर है, और मैंने जो झांका तो लगा क्या वाकई तो ही घर है। और मैं पहुंच गया।
0: भाई वाह क्या बात है, क्या बात है, बड़ी ये खूबसूरत खूबसूरत सी यादें हमारे बचपन की होती हैं जो बहुत मजा दिलाती हैं कभी कभी जब हम सोचते हैं इस बारे में।

0: प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शब्बीर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल हमें और सुनाएं, हमारे श्रोताओं को और सुनाएं।
1: गजल का मतलब समाज फरमाइए
0: जी।
1: अर्ज किया है कि ताखाब मिल गई ताबीर ख्वाब आंखों में, ताखाब मिल गई ताबीर ख्वाब आंखों में, सवाल मेरा था उनका जवाब आंखों में।
0: क्या बात,
1: ताखाब शुक्रिया, ताखाब मिल गई ताबीर ख्वाब आंखों में, सवाल मेरा था उनका जवाब आंखों में, अब खुली किताब की मानिंद पढ़ गया उसको। शेर रसिया तो जाऊंगा
0: जी,
1: कि खुली किताब की मानिंद पढ़ गया उसको, वो इस तरह से हुआ बेहिजाब आंखों में। खुली किताब की मानिंद पढ़ गया उसको, वो इस तरह से हुआ बेहिजाब आंखों में, और दबी रहेगी कहाँ तक गमों की चिंगारी, दबी रहेगी कहाँ तक गमों की चिंगारी, भड़क रहा है कोई इनकलाब आंखों में, भड़क रहा है कोई इनकलाब आंखों में। और शेर किया है कि लबों पे प्यास लिए ना मुराद लौट गया, लबों पे प्यास लिए ना मुराद लौट गया, मुझे पता ना चला है शराब आंखों में, लबों पे प्यास लिए ना मुराद लौट गया, मुझे पता ना चला है शराब आंखों में। और गजल का आखिरी शेर, क्या वैसे वक्त में इजहार दर्द क्या होता, तवज्जो चाहूंगा गोयल साहब
0: जी जी।
1: अब ऐसे वक्त में इजहार दर्द क्या होता, वो रूबरू थे मेरे और हिजाब आंखों में, अब ऐसे वक्त में इजहार दर्द क्या होता, वो रूबरू थे मेरे और हिजाब आंखों में। और मख्तार किया है कि मैं कितनी बार लुटा हूँ बताऊं क्या शब्बीर, मैं कितनी बार लुटा हूँ बताऊं क्या शब्बीर, हर एक जख्म है ताजा आजाब आंखों में, हर एक जख्म है ताजा आजाब आंखों में, ताखाब मिल गई ताबीर ख्वाब आंखों में, सवाल मेरा था उनका जवाब आंखों में। शुक्रिया शुक्रिया,
0: बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही शानदार गजल, बहुत ही शानदार गजल, बहुत ही शानदार शेर, बहुत लुत्फ आया साहब इस गजल को सुन के।

0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बस एक छोटा सा मासूम सा सवाल फिर से पूछना चाहूंगा आपसे। फर्ज कीजिए आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन कहीं से मिल जाए तो क्या मांगेंगे आप?
1: कैसा सवाल किया जाए?
0: फर्ज कीजिए आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन आपको मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे?
1: बस मांगेंगे यही कि दुनिया हम लोग शांति के साथ रहे
0: जी,
1: और सब लोग अपने अपने घर में खुशहाल रहे, लोगों में मोहब्बत और अखुवत बनी रहे, यही मेरी इच्छा है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब साहब, बहुत खूब। दोस्तों आपने सुना, शब्बीर साहब पूरी दुनिया में अमन और शांति चाहते हैं, जिन से भी उनकी यही गुजारिश रहेगी। तो शब्बीर साहब आगे बढ़ते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि एक अपनी गजल और हमें सुनाइए।
1: ठीक है नवाजी, शुक्रिया
0: जी।
1: गजल का मतलब सुनवाइए।
0: इरशाद।
1: आज हम साया ने एक बार ये साजिश की है, आज हम साया ने एक बार ये साजिश की है, घर जलाकर मेरे अखलास की बारिश की है। आज हम साया ने एक बार ये साजिश की है, घर जलाकर मेरे अखलास की बारिश की है, और शेर किया है तो जो कि मैंने लम्हात को मुट्ठी में मुकय्यद करके नया कर देखी मिलता। मैंने लम्हात को मुट्ठी में मुकय्यद करके एक नए फन नए उसलूब की कोशिश की है। मैंने लम्हात को मुट्ठी में मुकय्यद करके एक नए फन नए उसलूब की कोशिश की है, और शेयर किया है कि उनके अंदाज मोहब्बत के मैं सदके जाऊं, उनके अंदाज मोहब्बत के मैं सदके जाऊं, फूल सा जख्म दिया कितनी नवाजिश की है।
0: बहुत खूब।
1: उनके अंदाज शुक्रिया नवाजिश, उनके अंदाज मोहब्बत के मैं सदके जाऊं, फूल सा जख्म दिया कितनी नवाजिश की है। और गजल का आखिरी शेर के लोग गम में तो बिखरते हैं संवरता हूं मैं, लोग गम में तो बिखरते हैं संवरता हूं मैं, मैंने कुंदन की तरह तबके ये काविश की है, मैंने कुंदन की तरह तबके ये काविश की है, और मख्तासिया है कि इल्म दानिश ने मेरे फन को निखारा कितना, इल्म दानिश ने मेरे फन को निखारा कितना, आज शब्बीर गजल ये उसी दानिश की है, आज शब्बीर गजल ये उसी दानिश की है, और मैंने लम्हात को मुट्ठी में मुकय्यद करके एक नए फन नए उसलूब की कोशिश की है, लोग गम में तो बिखरते हैं समझता हूं मैं, मैंने कुंदन की तरह नब तब के ये काविश की है। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस गजल का, बहुत ही संजीदा लफ्जों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए आपने अपने दिल की सारे जज्बातों को इस गजल में डाला। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: हसरत जयपुरी जी की लिखी हुई बेहद खूबसूरत गजल हुसैन बंधुओं की आवाज में, आप हैं आरजे समीर के साथ।

0: शब्बीर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की आपने। हमारे सुनने वालों ने आपकी गजलों का पूरा पूरा लुत्फ लिया, बहुत बहुत उन्हें सराहा, उनकी गहराइयों को समझा, आपकी जो खसूसियत है, आपका जो पेशे अंदाज है बहुत खूबसूरत है। आपसे बातचीत करके भी, आपके विचार सुनकर भी बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब,
1: आपकी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: फिर मुलाकात होगी शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जुन मनीष आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान भाइयों कैसे हैं? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमारे किसान साथी अब खेती किसानी से फुर्सत हो गए हैं, क्योंकि गेहूं का जो सीजन था उन्होंने गेहूं अपने घर में बिल्कुल उगा के रख लिया है। अब हमारे किसान साथी बिल्कुल फ्री होंगे और अपने रिश्तेदारी जा रहे होंगे, आ रहे होंगे और यहाँ पर गप सड़ापा हो रही होगी। तो अपने किसान साथियों से कहना चाहते हैं कि आने वाले फसल की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा किसान साथी कभी भी फ्री नहीं रहता है। और साथियों हमें ध्यान रखना है कि इस बार हमें कुछ हटके करना है, क्योंकि जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे सभी से तब तक हमारी पहचान कैसे बनेगी? जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तब तक लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किसान उस गांव का रहने वाला है? तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बार हमें कुछ नया करना है और कुछ नई फसल उत्पादन हमें करना है। तो आप सुनिए हमारा कार्यक्रम खेती बाड़ी, क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर आप खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और श्रोता साथियों हम बता देना चाहते हैं कि हमारे किसान साथियों के लिए हम नई नई पद्धति और नई नई तकनीकी से हमारे किसान साथी कैसे खेती कर सकते हैं उस पर हम एक नजर डालते हैं। और साथ साथ में साथियों हमने कुछ दिनों से हम अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में खेती किसानी में हमारे किसान साथी किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उस पर हम नजर डालते हैं और अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं। और आज चूंकि हमने विषय चुना है गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, कुछ नई पद्धति से अपनाएं। और हमने विषय सोचा है कि ग्रीन हाउस में कैसे खेती करें, ये हमारे किसान साथियों के लिए एक अलग विषय होगा, लेकिन इसकी जानकारी आपको होना चाहिए और हमें अपने खेतों में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा झाबुआ जिला चूंकि हमारे खेती किसानी के लिए सही नहीं है, पथरीला इलाका है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद हमारे किसान साथी कुछ ना कुछ उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। आजीविका को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा कि किस तरीके से हम खेती के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, खेती के साथ साथ हम नर्सरी भी लगा सकते हैं, खेती के साथ साथ हम आजीविका को चलाने के लिए कुछ छोटे छोटे कुटीर उद्योग यानी व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। तो आज के हमारे जो कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज ग्रीन हाउस में किस तरीके से खेती कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, यदि हम फसल बोते हैं तो उसको पानी बार बार देना पड़ता है, तो ग्रीन हाउस आकर क्या है, किस तरीके से खेती होती है, इस पर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है। तो आइए सुनते हैं, लेकिन सुनने के पहले हम लेते हैं एक संगीतमय विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो भील टांडिया 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप? अब भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ। जब से हमारे क्षेत्र के किसानों ने उन्नत खेती को अपनाना चालू कर दिया है, तब से तो बाहर आ गई है। और वाकई में लगता ऐसा है कि विषय को ध्यान से सुन रहे हैं सभी किसान भाई, और उन्नतशील प्रजातियों को भी ला रहे हैं अपने खेत में लगाने के लिए, क्योंकि अब उनका विश्वास जाग चुका है टिकाऊ खेती की तरफ। खैर किसान भाइयों, विचार और विषय सुनने के लिए हम दौड़ लगाते हैं अपने खेतों में और बात करते हैं अपने किसान भाइयों से, क्या सोचते हैं वो, जिससे कि हमें उनकी धारणा का पता चले, यानी आज और हम में।
1: मैं विवेक यादव, मैं एक मध्यवर्गीय सुभाष नगर किसान हूँ। भैया, अगर हम अपनी नई तकनीकों को आज हम अपने खेतों में लगाते हैं तो भैया लागत आती है, पर यह लागत एक बार की है, जिससे हम भविष्य में काफी समय तक इससे लाभ ले सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया लगाओ एक बार और काटो बार बार।
2: मैं सुंदरदास, जगदीशपुर का किसान। हमारे ख्याल से आज स्थिति को देखते हुए नई तकनीकों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग पिछड़ जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, नई तकनीक को अपनाना थोड़ा महंगा जरूर है।
3: मैं जवाहर नगर का एक छोटा सा किसान हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। भैया, यह बात तो सही है कि खेती में अगर हम वैज्ञानिक तकनीक लगाएं तो इससे थोड़ा खर्चा तो आता है, पर इससे आने वाले समय में बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले पंप सेट लगाया था और मैं अभी तक उससे सिंचाई कर रहा हूँ।
0: किसान भाइयों की बात को ध्यान से सुनते हुए मुझे एक धारणा का पता चला भाइयों, कि हमारे सभी किसान भाई सोचते हैं कि भाई अगर हम उन्नतशील खेती करना चाह रहे हैं और नई नई जो तकनीकें हमें जो विशेषज्ञ बताते हैं उनको अपनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए निवेश करना बड़ा जरूरी है, और निवेश भी मामूली नहीं, बड़ा निवेश है किसान भाइयों। तो इस निवेश को किसान कैसे देखे, क्या खर्चा है उसके लिए या कि एक कमाई का नया साधन? और इसी बात से एक विषय जो सामने आया है कि निवेश एक बार, लाभ बार बार, यानी एक बार निवेश करने के बाद आप लाभ बार बार कैसे लें, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों की धारणा को और मजबूती से समझते हैं और चलते हैं बातों बातों में, जो कि है एक लघु नाटिका।
4: दिशान में पकड़ो, उधर से पकड़ो, चलो। हाँ, नहीं, रुको रुको रुको रुको रुको, तुम रुको रुको, मैं पहले उतरता हूँ। हाँ हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक,
5: आराम से आराम से।
6: हाँ, अरे घर में शादी है क्या? राम राम
4: राम राम, तुम हटो यार जरा, एक दिशान में ऐसे रखो।
5: हाँ, क्या कह रहे हो कल्लू भैया?
6: घर, मैंने कहा घर में किसी की शादी है क्या भैया?
4: शादी से तुम्हारा मतलब?
6: अरे इतना सारा सामान लेकर आए हो, शादी का ही लग रहा है।
5: शादी का? अरे कल्लू, ये जो पाइप है ये सामियाना का पाइप थोड़े ना है। ऊपर से ये बताओ, जो सामियाना कहीं पन्नी का लगता है क्या? है,
6: ये तो बात सही कह रहे हो भैया, लेकिन है क्या ये बवाल?
4: अरे भाई कल्लू, कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, हम लोग अच्छी खेती चाहते हैं, इसके लिए पाली हाउस लगा रहे हैं।
5: हाँ, और तुम्हें पिछली बार की बात याद है, संगम भैया कह रहे थे कि हम लोगों को टिकाऊ खेती करनी चाहिए, और टिकाऊ खेती के लिए अगर हम पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
6: इसके लिए पैसा तो बहुत खर्च किया दिलशान भैया।
4: हाँ, थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन भाई वो सब बराबर हो जाएगा, क्यों दिलशान भाई?
5: बिल्कुल भाई, आज हम पैसा लगा रहे हैं, कल पैसा फिर आएगा और परसों फिर आएगा।
6: इससे अच्छा तो आप अपने पान की दुकान खोल लेते, उससे तो रोज रोज आमदनी आती।
4: तुम भी यार कल्लू, हद है
5: भैया। हम लोग हैं किसान, हम लोग खेती करेंगे तभी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। पान और बीड़ी सुरती बेच के कुछ नहीं होने का है।
0: और वैसे भी कल्लू, छोटा बिजनेस नहीं बड़ा बिजनेस करो,
5: और आज की नहीं आगे की सोचो
7: भाई। पॉली हाउस में लगाओ लागत एक बार और कमाओ बार बार।
5: संगम भैया राम
7: राम, भैया राम राम।
0: संगम भैया कैसे हैं?
7: मैं तो भैया आप ही जैसा हूँ, एकदम टकाटक।
0: संगम भैया, यहाँ मैं और दिलशान भाई पॉली हाउस के लिए जो सामान था ले आए हैं। आप जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं। क्यों दिलशान भाई?
5: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम भैया, जिस दुकान पे आपने कहा था हमने सामान वहीं से लिया, इससे और दुकान से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है।
6: संगम भैया, कितना भी सस्ता पड़ा हो लेकिन है तो महंगा ही।
7: अरे कल्लू भैया, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन आज तो जरूर ये महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यही तो आपको बरकत दे के जाएगा, तब आपका जो पान का खोखा है ज्यादा महंगा महसूस होगा और ये पॉली हाउस बहुत ही सस्ता लगेगा।
5: बिल्कुल सही कह रहे हो संगम भैया। कल्लू भैया, आज हम ये पॉली हाउस लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि अगली बार इसको उखाड़ के बेचना पड़ेगा, एक बार ये लग गया तो सालों साल चलता है।
0: अरे दिलशान मियाँ, किसे समझा रहे हो? तुम तो जाओ कल्लू अपनी पान की दुकान खोलो, और हम भी तुम्हारे वहाँ आएंगे 10 साल बाद पान खाने।
6: चलो पान वान भैया छोड़ो, ये बताओ इस पॉली हाउस जो लगा रहे हो उससे क्या क्या फायदे होंगे?
7: अरे भैया, पॉली हाउस में ऐसी फसलों का उत्पादन हो सकता है जो उस मौसम में बाजार में नहीं मिलती, और जो फसलें बाजार में नहीं उपलब्ध हो और वो फसलें तुम बाजार में ले जाओगे तो बताओ कितना मुनाफा होगा, यानी 40 पैसे का बैंगन 40 रुपये में मिलेगा।
6: अरे भैया, ये तो मुनाफे वाली बात है, तो क्या मैं इसमें आपकी सहभागिता ले सकता हूँ?
0: क्यों नहीं?
5: लेकिन भैया जितना खर्चा हुआ है उतने के बराबर ही खर्चा देना पड़ेगा।
6: चलो ठीक है, मेरा भी एक हिस्सा जोड़ लो।
7: अरे ये हुई ना बात, तुम भी समय के साथ साथ चलने लगे हो, इसका मतलब थे बुद्धू और बन गए महात्मा बुद्ध।
0: किसान भाइयों, स्वागत है आपका। तो पता चला ना आपको कि भाई निवेश तो एक बार बड़ा करना ही पड़ेगा और लाभ बार बार होने की पूरी संभावना है। तो धन्यवाद संगम भैया कि आपने हमारे किसान भाइयों को और खास तौर की कल्लू को ये बताया कि भाई खेती एक बार करो, लाभ बार बार कैसे कमाओ, यही एक मंत्र है और इसी को अपनाना चाहिए। और अब इस बात को भाई और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपने विशेषज्ञ के पास, और विशेषज्ञ हमें आज बताएंगे कि भाई कौन कौन सी वो विधियां हैं जिससे कि हम नई नई खेती अपना सकते हैं। और संगम भैया, पॉली हाउस के बारे में आपने जो जानकारी बतवाई है वो तो बड़ी लाभकारी है कल्लू के लिए और उन सभी किसान भाइयों के लिए। तो भाई क्यों ना मैं भी किसान भाइयों आपको लिए चलूं संगम भैया की तरह अपने विशेषज्ञ के पास, ताकि वो हमें बता सकें कि भाई पॉली हाउस किस तरीके से फायदेमंद है।

0: डॉक्टर सुरेश कुमार मौर्य है और मैं सब्जी विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पे काम कर रहा हूँ।
1: जी जी।
0: सर्वप्रथम तो है कि पॉली हाउस बड़े काम की चीज है और खास तौर पे जो है बेमौसमी सब्जी उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका अंग होता है कि इसमें आप 6 से लेकर 8 गुना तक ज्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ दूसरी भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। जो भी आप सब्जी लेते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप बिना सीजन के आप उगाते हैं तो हमारी जनसंख्या को देखते हुए भी है कि हम जो है सब्जी उत्पादन अपना जो है जितना हो रहा है उससे हम बढ़ा देते हैं तो हमें बहुत सारी जो है सब्जियां जो है बिना मौसम में खाने को लिए मिलती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। देखिए पॉली हाउस कई तरह के होते हैं और जैसे आपका लो कास्ट है, मीडियम कास्ट है, हाई कास्ट है, तो हमारे किसान भाई किस तरह का पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं कास्ट उस पर निर्भर करता है। इसमें जो हम पॉली सीट यूज करते हैं उसमें भी बहुत तरह की पॉली सीट आती है कि एंटी डस्ट है, एंटी सल्फर है, एंटी फॉग है, तो ये लागत तो इस पर निर्भर करता है कि हमारे किसान भाई किस चीज का बनाते हैं। आप बांस का भी बना सकते हो साधारण पॉली हाउस, आप तो चाहे आप अब तो जीआई पाइप्स आती हैं उसका भी आप पॉली हाउस बना सकते हो, किस तरह का बनाते हैं। ज्यादा करके किसान भाई जो हमारी हमारा प्रदेश है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हम लोग के लिए लाभकारी होता है। बनवाते समय इसमें एक ही बात का ध्यान रखते हैं कम से 60 से 70% इसमें वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बीमारियों वगैरह का प्रकोप बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बनवाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पॉली हाउस बिल्कुल आपका न हो जहां पे छाया आती हो या ऐसी जगह न हो जहां पे पता लगा बरसात के दिनों में पानी भर गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेंस वगैरह से थोड़ा घिरा हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जानवर उसके पास कम से कम जा सके। पानी का स्रोत उसके आसपास होना चाहिए और बाजार से भी नजदीक हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीजें हैं और एक महत्वपूर्ण है कि पॉली हाउस बना लेते हैं तो चूंकि हम ठंडी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसान भाई पॉली हाउस अगर बना ऐसा नहीं है कि जब भी जो ये आता है और पॉली हाउस खोला और अंदर घुमाने के लिए चले गया, पॉली हाउस इसके लिए नहीं होता है। पॉली हाउस को कम से कम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बनाते समय एक और ध्यान रखिएगा कि दरवाजे जो हैं आपके बिल्कुल सामने की तरफ न खुले, थोड़ा सा घूम के आप दरवाजा बनाइए, इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट अंदर जाने जा नहीं पाते हैं, तो ये हमें काफी उससे लाभ रहता है। और जिन किसान भाइयों के जैसे पॉली हाउस बनवा चुके हैं 2-3 साल हो चुके हैं तो बरसात बीतने के बाद एक बार उसकी जो है पॉली सीट जो ऊपर होती है सर्फ से उसकी धुलाई जरूर कर दें क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम होता है कि बरसात के बाद पन्नी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी काई जैसी जमने लगती है, तो आप धुलाई कर दोगे तो उत्पादन जो है एक बार फिर से आपको दोबारा अच्छे प्रकार से मिलने लगेगा। और एक पॉली हाउस बनाते हैं तो आप पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाएं, कई सारे पॉली हाउस आपके लगे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं बिना तकनीकी जानकारी लिए हुए न बनवाएं तो बेहतर रहता है। एक बार आप जानकारी जरूर लें क्योंकि आपकी उपयोगिता क्या है, कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, ये सब चीजों का जैसे उसमें मिस्ट सिस्टम लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, तो हम सारी चीजों की जानकारी देते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और कितना बड़ा पॉली हाउस आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कम से कम आपका होता है कि 100 वर्ग मीटर का तो होना ही चाहिए, तो 100 से लेकर 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस अच्छा माना जाता है। इन सब चीजों को बनाए और लगाने का होता है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा, तो सावधानी के लिए भी आपको जो दवाएं हैं और जो डोज है बाहर से थोड़ा अलग होता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो आप किसी वैज्ञानिक से या संस्था से जुड़े रहें। बस ये है कि नहीं कि आप सब्जी का जैसे खेती से लगातार आय बढ़ाने का ये है कि खेत को हम कभी खाली ना छोड़ा जाए और पहले से सोच के डाइवर्सिफिकेशन की एक बात होती है कि ज्यादा तरह की फसलों का चुनाव किया जाए। बहुत सारी जैसे बीच में छोटा छोटा जैसे आपका गैप आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोबिया की बात होती है कि आपका गेहूं कटेगा और उसमें आप लोबिया थोड़े समय में 60 दिन में लगा के ज्यादा से ज्यादा जो है धान कटने के बाद आप लगा के ले सकते हैं, गेहूं और उसके लगने के पहले जो है आप उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो आप थोड़े थोड़े समय में, जैसे मूली एक ऐसी सब्जी है आप इसको साल भर में 8 बार लगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि 2 फसल के बीच में जो है हमारा थोड़ा गैप हो रहा है 25 दिन 40 दिन, तो आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करिए, लगाइए और आमदनी ले लीजिए। बिल्कुल भी हमें जो अगर हम लगातार लगे रहे और सोच बनाए रखे, खासतौर पे उन सब्जियों को भी जैसे लगता है कि साल भर आमदनी की बात है, तो कुछ किसान भाइयों को पॉली हाउस वगैरह भी बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना मौसम में भी जो है सब्जी हम लगा के हम जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। और लगाने सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाई जैसे है कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस सब्जी को लगाने जा रहे हो, उसमें लागत कितनी आएगी और उसका बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है। तो जहां भी आप लगाना चाहो, ये नहीं कि हमने कह दिया कि कोई भी सब्जी आप साल भर उगाते रहिए, इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप सब्जी उत्पादन शुरू करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा बहुत कोई नई सब्जी

0: या आप जैसे एक्जोटिक आप लेट्यूस लगाना चाहते हैं, सेल्ली लगाना चाहते हैं, इस तरह की सब्जियों की अगर खेती करना चाहते हैं तो एक बार बात जरूर कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जैसे हमारे दिल्ली है, वहां आपको मूल्य बहुत ज्यादा उसका मिलेगा। तो इस तरह की चीजों में लगने से पहले एक बार बाजार को देख लें, वैज्ञानिक सलाह जरूर ले लें। और मुझे लगता है कि ऐसी सब्जी है जैसे टमाटर तो पूरे साल भर, और किसान भाई देख रहे हैं कि हर एक सब्जी पूरे साल भर मिल रही है, मिल कहां से रही है, जब कोई किसान उगा रहा तभी तो मिल रही है आपको, तो दूसरा उगा सकता है, हमारे देश के दूसरे भाग में उगा सकता है, तो हम क्यों नहीं उगा सकते। तो पूरा है कि सब्जी से अगर व्यवसाय में लगा जाए तो हम पूरे साल भर जो है उसमें लगे रहेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हमें आधुनिकीकरण करना पड़ेगा कि हमें जो है पाली हाउस है, मल्च है, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, कुछ नई चीजें जो आई हैं, नई प्रजातियां हैं, इनका हम समावेश करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि साल भर जो है हमारा जो परिवार, हम खुद भी अच्छी सब्जी खाएंगे, दूसरे को भी अच्छा खिलाएंगे। तो ये जैसा कि है कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो सब मिल के चले तो सभी अच्छा ही अच्छा।
1: तो किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कंकरीट के जंगल में, और मैं विकास स्वागत करता हूँ 14वें अंक में, यानी आज है हमारा 14वां अंक। किसान भाइयों, ध्यान से आप इस जानकारी को सुनिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम कंकरीट के जंगल की श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम से आपको कई खेती के नए आयामों के बारे में अवश्य ही पता चला होगा। भूमि कितनी आवश्यक है, उसका रखरखाव कितना आवश्यक है, और भूमि हमारे भविष्य को किस प्रकार से संजो के रखती है, इन सभी बातों में हमने किया है गौर अभी तक। तो आइए आपको लिए चलता हूँ और बताता हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं, यानी छोटी पर मोटी बातें,
2: छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
1: किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपसे बात करके स्पष्ट तौर पर पता चला कि किसान भाई डरते हैं अधिक लागत लगाने से। भाई, ये एक बार का सौदा है, लगाना फायदेमंद ही साबित होगा, और यही बात तो संगम भैया ने भी बातों बातों में हमें बताई। बातों बातों में सारी बातों को समझ के विशेषज्ञ ने भी हमें बताया कि पॉली हाउस के क्या लाभ हो सकते हैं और किन लाभों को लेते हुए आप एक बार की गई मेहनत से कई वर्षों तक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये है हमारा आज का विषय, जो कि है निवेश एक बार लाभ बारंबार।
2: छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
1: तो किसान भाइयों, अब समय आ चला है कि आपने कितना दिया है कार्यक्रम में ध्यान, इसीलिए परखूं आपका ज्ञान।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना और इसमें जाना कि किस तरीके से ग्रीन हाउस के साथ हम खेती कर सकते हैं। ये हमारे किसान साथियों के लिए एक नई तकनीकी है, इस तरीके की तकनीकी अपनाकर अपनी खेती में मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, और खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ के किसान साथियों को सख्त पानी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि अगर फसल वो बोते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी उनको देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें किसान, एक विकल्प हमने उनको दिया है कि ग्रीन हाउस की खेती करना चाहिए, और किस तरीके से उससे मुनाफा कमाना चाहिए। आप नर्सरी भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधे जो बिकने लायक रहते हैं, चाहे वो फूल के हो चाहे वो सब्जियों के हो, उनके हम नर्सरी लगाकर तैयार कर सकते हैं ग्रीन हाउस के माध्यम से। तो ऐसे हम तकनीकी का उपयोग कर अपनी आजीविका को हम बढ़ा सकते हैं। यही विकल्प है, छोटे छोटे विकल्प है जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद आवश्यक रहते हैं। और आवश्यक के साथ साथ हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम कैसे करें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनसे जाकर संपर्क करना चाहिए, और केबीके आपके नजदीक है वहां पर जाकर वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहिए और इस तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहिए। कुछ तरीके से झाबुआ जिले में इस तकनीकी का हम इस्तेमाल करके करके अपनी फसल उत्पादन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी तकनीकी हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, और महत्वपूर्ण के साथ साथ हमारे किसान साथियों को अब सोचने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग चूड़की कड़कनाथ यहाँ पर प्रचलित मात्रा में किया जाता है, यानी लोग इसको एक आजीविका के तौर पर देखते हैं, तो वो कड़कनाथ भी एक विकल्प हो सकता है हमारे किसान साथियों के लिए। कड़कनाथ पालन कर सकते हैं, इसके लिए सरकार भी इसके लिए मदद करती है, और साथ साथ में नर्सरी का विकल्प भी है आपके पास। हम सब्जियां भी लगा सकते हैं, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो जायज की फसल भी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे विकल्प हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की इजाजत, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। अब हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, खासतौर पर उन पथरीली इलाकों में हम किस तरीके से अपनी फसलों को और फल को लगा सकते हैं। जैसे कि कपास पर हमने बातचीत की थी कि हमारे किसान साथी कपास की खेती चूंकि झाबुआ में होती भी है तो किस तरीके से वो लगा सकते, क्या सावधानी और

अपना हकनी लड़ाई से अपना हकनी लड़ाई लड़वा माटे गमे गाम थी मारा भाजो मारी बहनो मारा काका मारी काकियो ओ बता।

0: तड़प मारे थोड़ो।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: नमस्कार साथियों, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें। और मित्रों, कैसे हैं हमारे किसान साथी? हमें आशा है कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और घर पर बैठे होंगे। हम अपने श्रोता साथियों को कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर छोटी छोटी बातें भी उनको बताते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। खासतौर पर गर्मियों का समय चल रहा है, ऐसे में हमारे अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है, क्या करें किसान साथी? किसान साथियों के पास हमारे किसान साथी जो पशुपालन करते हैं उनके लिए भी समस्या है कि अब वो क्या करें, क्या उनको खिलाएं। तो उनके लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम ऐसे छोटे छोटे विषयों पर बातचीत करेंगे कि हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में कौन से, अभी चूंकि बाजरा का भी हम समय है, बाजरा भी अपने खेतों में, खाली पड़े खेतों में बो सकते हैं। चूंकि पथरीला इलाका है तो हमें संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क करना होगा और उनसे बाजरा की किस्में जो रहती हैं, किस तरीके की हम बोने का जो पद्धति रहती है उस पर भी हमें जिक्र करना होगा। हम आज के कार्यक्रम में कुछ आंकड़े आपको जरूर बताएंगे, कुछ ऐसे किस्में के बारे में बताएंगे जो शायद आप आसपास आपको उपलब्ध हो जाए, और अगर नहीं होती हैं तो आपके यहाँ, चूंकि झाबुआ जिले की बात करें तो कौन से ऐसे बाजरे की बीज है जो हमारे किसान साथी उसको लगा सकते हैं। आज हम उच्च घनत्व की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, साथ साथ हम बागवानी पर भी चर्चा करेंगे और उन्नतशील बीज कैसे हो सकते हैं, चूंकि चरी भी हुई और साथ साथ में बाजरा भी हुआ, कौन सी ऐसी प्रजाति हैं उस पर हम आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कुछ आंकड़े हैं, सूखी धरती पर कैसे करें खेती, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए। क्योंकि भारत में अगर भारत की दृष्टिकोण को देखा जाए तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% यानी 31 करोड़ हेक्टेयर शुष्क जमीन यानी क्षेत्र है। इस शुष्क क्षेत्र का सबसे अधिक भाग यानी 62% अकेले राजस्थान राज्य में है। शेष क्षेत्र गुजरात 19%, पंजाब हरियाणा 9%, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश 10% राज्यों में से एक है। राजस्थान में शुष्क क्षेत्र राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में 12 जिले में फैला हुआ है। राज्य का ये क्षेत्र अपनी विषम परिस्थितियों के लिए दूसरे क्षेत्रों में विचित्र है। कम तथा असमान वर्षा, अधिक तापमान यानी 40 से 48 डिग्री सेल्सियस, अधिक वायु गति 60 से 110 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, अधिक बाष्पोत्सर्जन भी होता है। तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि विषम जलवायु की क्षेत्र को यदा कदा सूखी में ग्रसित रखती है। विषम सूखी की स्थिति में सतही और भूजल के स्तर में कमी आ जाती है, भूमि कटाव से उपजाऊ भूमि में क्षति होती है व फसल उत्पादन में काफ़ी कमी दिखाई देती है, और अन्न और चारा व पानी की कमी के कारण मानव और पशुओं के जीवन यापन पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को पशुओं सहित अन्न चारे व पानी के लिए प्रव्रजन करने का मजबूर होना पड़ता है, यानी यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खासतौर पर हम और आप देखते हैं, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो हमारे किसान साथी क्या करते हैं, खेती बोने के बाद वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं, गुजरात या अन्य शहरों में चले जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो ये बड़ा संकट का विषय है कि हमारे किसान साथी क्या करें, कैसे खेती का उत्पादन बढ़ाएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं किसान साथियों की, हम एक नई पद्धति, आधुनिक पद्धति से अब खेती करना हमें स्टार्ट कर देना है। नई नई वैरायटी आपको जो चूंकि यहाँ पर नहीं होती होगी, तब भी हम उनके बारे में आपको जिक्र करेंगे। एक आंकड़े आपको बता देना चाहिए कि शुष्क जो क्षेत्र रहता है उसमें जो भूमि वनस्पति का क्षति पहुंचाते हुए पानी बह जाता है, तो ऐसे में हमें भूमि का जो कटाव है उसको रोकना होगा। पानी के भराव के लिए चूंकि अभी से व्यवस्था करनी होगी, जैसे ही बरसात का मौसम आएगा वो हमारे तालाब या अपने खेत है वो भर जाएंगे, इससे हमारे जो नमी जो रहती है मिट्टी की वो नमी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में मानव और पशुओं की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 1951 में 58 लाख से मुकाबले 2001 में 2.5 करोड़ हो गई थी, और आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है। तो क्या करना चाहिए, फसलों में किस तरीके से सुधार करना चाहिए हमारे किसान साथियों को, शुष्क क्षेत्र में खासतौर पर परंपरागत विधियों से खेती करने और उनके अनेक जीवीय एवं आजीवीय कारणों से सभी फसलों की औसत उपज बहुत कम हो रही है। औसत उपज को अधिक बढ़ाने के लिए हमें संसाधन या संस्थान ने विभिन्न पहलुओं पर उन्नत तकनीकें विकसित की हैं, उन पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। विभिन्न परिस्थितियों में वर्षानुसार फसल, घास व वृक्ष लगाने की अनुशंसा की गई है, तथा फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनेक उन्नत तकनीकें विकसित की गई हैं। आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। जरूरत उन्नत किस्मों की है, हमें कौन सी उन्नत किस्म है उसको हमें लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इस पर हम विचार करेंगे, आपको बताएंगे आगे। और साथ में प्यासी धरती क्या कहती है, क्या मांगे करती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक संगीतमय विराम लेते हैं, इस भीली गीत को सुन लेते हैं, बने रहिए आप।

0: जय जोहार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने इस पहले से भीली गीत को सुना, इसका आनंद लिया। आगे बढ़ते हैं और आज हम ऐसी किस्म के बारे में, उन्नत किस्में के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि शुष्क क्षेत्र में फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त करने में फसल की पकने की अवधि का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि शुष्क क्षेत्र में फसल उगाने के लिए 10 से 12 सप्ताह का समय मिलता है। इस अवधि में जो फसलें पक जाती हैं उनसे अच्छी पैदावार प्राप्त होती है, अन्यथा देरी से पकने वाली फसलों में नमी की कमी के कारण फसल अच्छी तरह से पक नहीं पाती है, परिणाम स्वरूप पैदावार बहुत कम होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने बाजरे की जो CZP 5802 CZP IC 923 किस्में विकसित की हैं। ये संकुल किस्में हैं तथा 75 से 85% और पैदावार अधिक देती हैं, साथ साथ में 75 से 85 दिनों में ये पक जाती हैं। दाने व चारे दोनों की अच्छी पैदावार होती है। इन किस्मों द्वारा 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर दाने की उपज प्राप्त हो जाती है, ताकि धरती ना बांझ हो। शुष्क क्षेत्र में अधिकतर भूमियों की उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है, अतः अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उचित पोषक प्रबंध बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि क्षेत्र व भूमि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी फसलों में सम्मिलित पोषक प्रबंधन की बहुत लाभदायक एवं प्रभावी है। सभी फसलों में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा कार्बनिक खाद जिसमें गोबर, कंपोस्ट या अन्य देसी खादों का साथ साथ आधी मात्रा में रासायनिक खादों का या बीजों का जैविक उर्वरक यानी राइजोरियम और एजेटो वेक्टर व PSB में उपचारित करने के बाद फसलों की औसत उपज में संतोषजनक वृद्धि होती है। अब अगर पानी की बात करें तो शुष्क क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए उचित जल प्रबंधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सतही एवं भूजल की अधिक से अधिक क्षमता बढ़ाने में उचित जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण स्थान रहता है। बरसात के पानी को भूमि की सतह एवं अधोसतह की विभिन्न विधियों द्वारा एकत्रित हम कर सकते हैं, कुंड बना सकते हैं। पंक्ति विधि रहती है उसमें 30 से 40 सेंटीमीटर व्यास के 15 सेंटीमीटर गहरे कुंडे बनाए जाते हैं। इन कुंडों में क्षेत्र पट्टी से वर्षा जल एकत्रित होकर कुंड में फसल के लिए अधिक समय तक नमी प्रदान करता है, अतः क्षेत्र पद्धति में फसल उगाने वाली पट्टियों के बाद बेंच बनाई जाती है और इसके बाद फिर पट्टी बनाई जाती है। इस प्रकार एक दिशा में 1.5 मीटर का कैचमेंट एरिया जो रहता है और दोनों तरफ 3 मीटर चौड़े क्षेत्र से पानी एकत्रित किया जाता है और एकत्रित नमी द्वारा फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी से हमें तैयारी करना चाहिए, हमें कैचमेंट एरिया तैयार करना चाहिए, हमें मिट्टी को रोकने के लिए जो पानी कटाव हो जाते हैं जब बरसात का समय आता है तो उनके लिए रोकने के लिए हमें अभी से मेड़बंधान करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वर्षा जल के अपधाम के रूप में होने वाली क्षति को रोकने के लिए वर्षा जल को तालाब, जलाशय व जो खड़न एवं टांकों में एकत्रित किया जाता है। संस्थान द्वारा उन्नत किस्म के टांकों में डिजाइन तैयार की जाती है। घरों की छत से भी इन टैंकों में पानी एकत्रित करने की विधि विकसित की गई है और टैंकों के चारों ओर कैचमेंट क्षेत्र में पानी एकत्रित कर यह पानी फलदार जो वृक्ष की सिंचाई करने के लिए, पशुओं और मनुष्यों के पीने पानी के लिए लिया जा सकता है। टैंक ऊपर से ढका होने के कारण पानी का बाष्पोत्सर्जन यानी बहाव द्वारा जो उड़ जाता है और उनको कम क्षति होती है और स्वच्छता भी बनी रहती है। नमी बनाए रखने के प्रयास विकास के लिए आपको क्या करना होगा। शुष्क क्षेत्र की अगर बात करें तो तापमान एवं वायु की गति होने के कारण नमी शीघ्र ही सूख जाती है, क्योंकि हम देखते हैं पथरीला इलाका है। नमी की क्षति को रोकने के लिए हमें बिछावन को प्रयोग में लाने के लिए अनेक संसाधन किए जाने चाहिए, और घास की बिछावन द्वारा मूंग मोट और ग्वार की पैदावार 20% कम अधिक प्राप्त की जा सकती है। और इसी प्रकार पॉलीथीन की बिछावन और बाजरे की बिछावन से पानी उपयोगी बिना बिछावन के अधिक प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी विधियां जो आपको ध्यान में रखना है, और साथ साथ में और भी बातचीत होगी। तो हम यहाँ पर हम आपको सीधा ले चलते हैं, हमारे साथ जो हमारे साथी हैं वो पांडे जी से बात करा रहे हैं कि उच्च घनत्व की बागवानी किस तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक और अच्छे से लोकगीत को सुनते हैं, इसके बाद बातचीत को हम जारी रखेंगे। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात।

किसान है और वो भी चाहते हैं कि हम इसमें सभी फसलों का समावेश कैसे करें। अपनी खाद्यान्न फसलें भी उगाते हैं और उसमें चाहते हैं कि साग सब्जी फलदार पौधे और सभी चीजों का समावेश हो, जिससे हम जो है कम जगह में और कम लागत में और अधिक से अधिक उत्पादन और अधिक से अधिक आय कैसे प्राप्त करें। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि भैया अपने यहाँ जो है जैसे आप गेहूं लगाते हैं, चना इत्यादि लगाते हैं, कुछ ऐसा अपना एरिया जो है रख लें आधा पौन एकड़ या एक एकड़ कि उसमें अपन उद्यान की फसलें लगाएं। जैसे अपन क्या है मान लो अमरूद लगा रहे हैं, है ना, तो अमरूद लगाते हैं तो आजकल ऐसी तकनीकी आ गई है कि कम जगह में उसको उच्च घनत्व का अमरूद बोलते हैं, प्लांटेशन करना, उच्च घनत्व का पौधरोपण करना। तो इसमें अपन दूरी कम कर देते हैं, भाई 6 मीटर कर दिया अपने लाइन से लाइन की दूरी, 5 मीटर कर दें, 6 मीटर कर दें और पौधे से पौधे की दूरी 3-3 मीटर पर कर दें और फासला कम कर दें। तो इससे क्या होगा, पौधे अधिक आ जाएंगे संख्या में और उत्पादन अधिक होगा। परंतु भैया एक चीज का ध्यान इसमें रखना पड़ता है, ये नई तकनीकी है कि इसमें कटाई छटाई करना जरूरी होता है, क्योंकि घने पौधे हैं तो उनकी शाखाएं अगर व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो उतना उत्पादन नहीं होगा। तो जब भी अपन फलन उसका लेना चाहें उसके 2.5 महीने पहले उसकी कटाई छटाई कर दें। जैसे बरसात की फसल लेना है अपने को अमरूद के लिए, तो बरसात की फसल माने ये है कि अपने जुलाई अगस्त में आएगी, तो इससे अप्रैल मई में इसकी कटाई छटाई कर दें, जिससे वो बरसाती फसल आ जाएगी और इसके बाद फिर अपन फिर पुनः छटाई कर दें तो फिर आगे की फिर रबी की ऐसे और इसके बाद एक और कटाई छटाई कर दें तो इसके बाद फिर लगभग अप्रैल मई तक वो फसल चलती रहती। तो 3 फसलें अपन अमरूद से भी ले सकते हैं और बीच बीच में पपीते के पौधे लगा दें। पपीते के पौधे लगाने से क्या होगा कि वो तो 2 साल की फसल है, 3 साल की, उस बीच में पौधे बड़े हो जाएंगे जल्दी और 1-2 फसल उसका भी ले सकते हैं अपन। तो इस तरह से भैया लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे अपन अमरूद है, आम है ना, और आंवला है, और अपन ये नींबू है, ऐसे फल लगाएं, वो कटाई छटाई करके व्यवस्थित करके उसको, अब कटाई छटाई का तरीका भी होता है।

0: मैया की जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: पांडे जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे अपने किसान साथियों ने अगर जो पेड़ पौधे रोप लाए हैं, लगा लाए हैं, अब बड़े हो गए तो कटाई छटाई करने का भी कोई व्यवस्थित तरीका हो चुके, वो भी हमारे किसान साथियों को बताएं, जिससे कि उनका जो बाग बगीचा है वो सुंदर दिखाई देने लगे।
2: देखो भैया, इसके लिए ऐसा है कि इस विधि से जब अपन पौधे लगाते हैं उच्च घनत्व के, उच्च घनत्व मतलब ये कि कम जमीन में जो निश्चित उसकी दूरी है, उस दूरी को और कम करके उसको मैं ज्यादा पौधे करीब डेढ़ दूने पौधे लगा देना। इस तरीके के पौधे लगाए में उच्च घनत्व होता है, तो इसमें भैया सबसे पहले अपन क्या करना है, कोई पौधा लगाया, जैसे मान लीजिए अमरूद का लगाया अपन ने, तो अमरूद का पौधा जैसे ही 1.25 मीटर का हो जाए तो भैया उसकी मेन शाखा जो प्रमुख शाखा ऊपर बढ़ रही है उसको काट देना है, थोड़ी मैंने 4-6 इंच छोड़ के काट देना है। उस काटने से क्या होगा, बगल से शाखाएं निकलेंगी, बगल से शाखाएं निकलेंगी भैया, तो 3 शाखा रखना है अपने को सिर्फ चुनाव करके कि जो अगल बगल में निकलेंगी। जब 3 शाखाएं निकलेंगी और वो 0.25 मीटर की हो जाए, 75 सेंटीमीटर की, तो उसको भी काट देना है भैया। जब उसको काट देंगे तो पुनः उसकी बाढ़ आगे रुक के और बगल से फिर और शाखाएं निकलेंगी। जब और शाखाएं निकले तो फिर उसको 0.25 मीटर छोड़ के उसको भी काट देना है, और बीच बीच में भी कुछ घनी अगर शाखाएं होती हैं तो उसको भी काटते रहें। इससे क्या होगा कि पौधा का जो अपन काट रहे हैं तो ऊपर तो वजन बढ़ेगा, लेकिन पौधा मोटा हो जाएगा, नीचे का तना, तो उसका भार भी सहन कर जाएगा।

0: जरूरी हो जाते हैं। अच्छा, जैसे अब किसी किसान भैया वालों को जो उच्च घनत्व का बाग बगीचा लगाना हो तो इसकी तैयारी हमारे किसान साथियों कब से कर देना चाहिए?
1: इसकी भी ये तैयारी अपन को क्या है कि जैसे मई का महीना है, अप्रैल मई, तो गेहूं अपनी कटाई हुई, उसके बाद जहां अपन को जो लगाना है पौधे, उसमें बढ़िया गड्ढा खोद लें, निश्चित दूरी पे, जैसे 3-3 मीटर पे गड्ढे खोद लें और लाइन से लाइन 5 मीटर रखें, 5 से 6 मीटर रख लें अपनी सुविधा के अनुसार, और 3-3 मीटर पे उसकी घनी घनी जो है वो गड्ढे खोद लें, और गड्ढे खोद के उसको धूप लग जाने दें 15 दिन, और उसमें कुछ कचरा जला के उसको और जला दें, जिससे उसको जीवाणु जो है ये सब खत्म हो जाएंगे। ना भी जला दें तो धूप जरूरी है, कम से कम 15-20 दिन की धूप बहुत जरूरी है, ताकि वो पूरी तप जाएगी मिट्टी। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, 15-20 दिन तपने के बाद जो बगल की मिट्टी है उसमें खाद, कम से कम 1.5 तसला खाद मिला दें उसमें, है? और कुछ DAP या सुपर फास्फेट जो भी हो गड्ढे के हिसाब से मिला दें। अगर 3 फुट का गड्ढा है तो आप उनको करीब 250 ग्राम DAP मिलाना है, उससे कम है तो 200 ग्राम मिला दें DAP, और कुछ थोड़ी सा पोटास मिला दें उसमें, करीब 100 ग्राम पोटास मिला दें, और मिक्सअप करके पूरा गड्ढे को भर दें, जब टीला सा बन जाए पूरा वैसे ही भर दें। और जब भी पौधा लगाना हो थोड़ी मिट्टी उसकी हटाएं, जितना पिंड है मिट्टी का जो पौधा लाएंगे उसमें पिंड मिट्टी का लगा रहेगा, उतना मिट्टी हटाएं और उसको वहीं रख दें, और बगल से मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें और पानी अवश्य डाल दें, ताकि उसके में एयर जो है वो न रहे। इस तरह से पौधे हम तैयार करें।
0: बहुत ही उम्दा जानकारी अपन खावे पांडे जी द्वारा मिली है कि हमारे किसान साथियों की आय बढ़ाना है तो हमारे किसान साथियों के पास और जमीन कम है तो वो उच्च घनत्व की विधि अपनाकर सभी तरह के पौधे लगाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए हमारे किसान साथियों को बस तैयारी पर ध्यान देना है कि तैयारी किस तरह से करनी है, किस तरह से गड्ढे खोदने, किस तरह से और कौन सी खाद उस गड्ढे में अपन मिलाना है, ताकि हमारे किसान भैया उनका जो पौधा लगाओ जा रहा है गड्ढे में वो स्वस्थ बन रहा है और आगे चल के अपन खाऊ से बढ़िया फल मिलत रहे। अंत में आप हमारे किसान साथियों को कछु कहना चाहें?
1: हाँ, मैं एक ही चीज किसानों को जो है सलाह देना चाहूँगा कि किसान भाई समय पे करें, जो काम करना है वो समय पे ही करें। जैसे कटाई छटाई करना है पौधों की, समय पे ही महत्व है। अगर उसको आगे पीछे करेंगे तो आपकी, चूंकि फूलने का समय निश्चित होता है, बोर आने का समय निश्चित होता है, फलन का समय निश्चित होता है, तो वो सब समय से करेंगे तो ही उसमें फल जो है अधिक लगेंगे। और ये भी ध्यान रखें कि पौधे के बीच बीच में जो है हवा और प्रकाश का संचार बना रहे, तो ऐसी जगह पौधे लगाएंगे जहाँ से उसका प्रकाश उसके अधिकतम जो है उस पौधे को क्रॉस करता हुआ वो जाए।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी ये सारी जानकारी देने के लिए, और हमारे किसान साथियों की आय बढ़ाने के लिए जो आपने बात रखी या बताई, इसके लिए हम और हमारे सभी किसान भैया बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कराते हैं।
1: धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में, और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें। और अभी आपने इस परिचर्चा को सुना और इसमें जाना कि किस तरीके से उच्च घनत्व की बागवानी हमारे किसान साथी अपनी पथरीली जमीन में कर सकते हैं। बागवानी भी एक विकल्प है जिसे आप कर सकते हैं। इस खास बातचीत को सुना और पांडे जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि उच्च घनत्व वाले जो बागवानी रहते हैं उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती हैं, उस पर भी उन्होंने खासा प्रकाश डाला। तो हमारे किसान साथी समझ ही गए होंगे कि हमें इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, तभी हम एक अच्छे उन्नतशील किसान बन पाएंगे। आपको बता देते हैं कि नए बागों की स्थापना जैसे कि आम, अमरूद और आंवला, उच्च घनत्व की रोपाई, रोपण सामग्री और समेकित नाश प्रबंधन के लिए सामग्री की लागत का 50% और प्रति हेक्टेयर 40,000 का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। यह अनुदान 60-20-20 तीन किस्तों में दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरे वर्ष 75% पौधे और तीसरे वर्ष 90% पौधे आपके जीवित होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 85% व 15% योगदान की स्कीम है। तो हमारे श्रोता साथी और हमारे किसान साथी इसको कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आम, अमरूद और आंवला सामान्य घनत्व की रोपाई, रोपण सामग्री एवं समेकित नाश प्रबंधन के लिए सामग्री की लागत का 75% या फिर प्रति हेक्टेयर 30,000 का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान

60-20-20-3 किस्तों में दिया जाता है, बशर्ते दूसरे वर्ष 50% और तीसरे वर्ष 90% आपके पेड़ पौधे जीवित हों। नींबू वर्गीय और चीकू रोपण सामग्री और समेकित नाश प्रबंधन के लिए सामग्री की लागत का 75% और प्रति हेक्टेयर 26,500 का अनुदान दिया जाता है। अनुदान 60-20-20 की 3 किस्तों में दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरे वर्ष आपको 75% पौधे और तीसरे वर्ष 90% पौधे आपके जीवित हों। तो ये खास तौर पर योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको इसका लाभ लेना चाहिए बागवानी का। खास तौर पर अभी चूंकि समय है और हमारे किसान साथी इसको आसान तरीके से ले सकते हैं और अपने आय को बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में बेर रोपण सामग्री और समेकित नाश प्रबंधन के लिए सामग्री की लागत का 75% या फिर प्रति हेक्टेयर 13,500 का अनुदान दिया जाता है। अनुदान 60-20-20 की 3 किस्तों में दिया जाता है, बशर्ते दूसरे वर्ष 75 पौधे और तीसरे वर्ष 90% पौधे आपके जीवित हो। तो ये महत्वपूर्ण स्कीम्स है सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, इसका लाभ आप ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए कृषि विस्तार अधिकारी या फिर KVK में जाकर संपर्क हमें करना चाहिए। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 94-25-41-36-00, इस पर आपको कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त करना है। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

अपनी लड़ाई लड़वा मते बने जान थी मारा भाई मारी बहनों मारा काका मारी काकियों एक बार सालों सालों

0: तड़प मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: मेरा पहला प्यार।
1: देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था। गाता

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

जिया ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाख में।

किसान तुम चलते हो गहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुड़िया चलती है, जब चैन से कोई सोता है, जिया ओ जिया ओ जिया।

0: खुशी से होता है, दो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाख में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

देवानंद जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

0: वो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों।
1: आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों।
0: वो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों।
1: आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों।
2: झिम झिम बरसे प्यार

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि देवानंद साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थी। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।